इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बरात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बरात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बरात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बरात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बरात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बरात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बरात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आगे दामे, बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख ले कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें, नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बरात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बरात हुई चालू, डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है, बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही, दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए, और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है, अरे माता जी नहीं आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है, ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना आगे यही अपनी छोड़ी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुँह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के, और बाबा एकदम तैयार अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने।
और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरे ओ मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पर। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो, बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई, बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगा, तू कहेगो मुकू मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर? तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊ मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो, सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहाँ तू आयो है, जहाँ लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काही के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा है, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल बालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है।
अच्छो तुम, हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनों काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते। अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आ, अरे मैया कहा कर रही है, तो को तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करू? बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई है। मैया बोली अब कहा करे? बोले कहा करे का नजर उतारो या की? बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो, अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई, ओ मैया अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकिन यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे।
फोकी ने देखी, नजदीक गई। बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी, बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले, पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले, हमारी मैया है ना, वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वारों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले, हाँ। मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, तुम भी कर दो। बाबा जी बोले, अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी, मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आई, चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती, मैया ओ मैया, बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। और कौन सो बाबा जी? बोले, मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले, ले कराई काम खराब, मैं कबते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, और तू आकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली, मोको तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को, बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी, और नजदीक जाने को, और नजदीक चली गई, बाबा के और पास गई, और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए? जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से

अच्छा और बड़ी। अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो तोपे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया, अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो कु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो कु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो याके ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आंख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता अब छोरी नहीं। अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, बोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलू, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा, क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे, यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे, आज भी ब्रज जाइए 4 स्थान पर 4 रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें, सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आपके लिए इजी कर देती हूँ कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ, तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें? और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सामने हो।
1: फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

सच कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें, सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: कॉलिंग।
1: हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल, आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। मेनी टाइम्स पेरेंट्स कम्स टू मी एंड मेनी टाइम्स आई एम सीइंग टीनेजर्स, दे आर जस्ट नॉट know about the nutrition, they do not know what to follow, what not to follow, they are very curious about their bodies, unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain, they are into adolescence age, unki reproductive or sexual life active ho rahi hai, aur wo bahut galat galat fancy trends google aur instagram aur social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful, to हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला

0: बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
1: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं, और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया। टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

तेरा बावला सा ढंग, तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे

गुड मॉर्निंग एजी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे फरीदाबाद वालों? और देखो यार, हालचाल पूछने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त आरजी अंजलि। और आप सुन रहे हैं मुझे अंजलि ऑन एयर पर रेडियो महारानी 89.6 एफएम से, जहाँ हर रोज सुबह 7 से 11 होती हूँ, बहुत सारी बातें लेकर आती हूँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आती हूँ और बहुत सारी बातें करूंगी आपके साथ। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? सुबह वाली चाय। तो सुबह वाली चाय की पहले से प्ले लीजिए। तो आज बातें थोड़ी चटपटी होने वाली है, लेकिन चटपटी बातों के साथ साथ और क्या होने वाला है? वेदर का अपडेट मिलने वाला है, फरीदाबाद की लोकल खबरें आप तक पहुंचने वाली है, साथ ही बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है सब कुछ आप तक लेकर आऊंगी। खुद को साइबर अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फरीदाबाद की पहली भी पूछने वाली हूँ, आपकी दिमाग की बत्ती भी जलाने वाली हूँ। तो बस बहुत सारी बातें, एंटरटेनमेंट का बहुत सारा डोज आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है, 4 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, प्यार सा ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंशली आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि AI भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वो एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचेगा कि हो सकता है ये आपकी अपने की आवाज होगी ना, बिकॉज अब AI से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की AI वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं स्मार्ट रहिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार सा ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। कंफर्म जरूर।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो है अंजलि ऑन एयर। तो भाई देखिए, जब अंजलि ऑन एयर होती है तो रेडियो महारानी पर ना बातचीत बहुत ज्यादा होती है, और उसी बातचीत के साथ तो मैं लेकर आ गई हूँ आज सोशल स्क्रोल, यानी कि यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक स्टोरी के बारे में जो इंटरनेट पर सबका दिल जीत रही है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ज्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पर ना एक लेडी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया कि फ्राइडे शाम ऑफिस बंद होने से सिर्फ 5 मिनट पहले बॉस ने उन्हें एक एनवलप दी। एनवलप लेते ही ना उन्हें लगा शायद उनकी जॉब चली गई, और वो घंटों तक ना उस एनवलप को देखती रही, उनकी हिम्मत ही नहीं उसे ओपन करने की। जैसे ही उन्होंने एनवलप खोला तो पता चला कि अंदर टर्मिनेशन लेटर ही नहीं है, बल्कि उसमें उनके पिछले 4 साल के अनक्लेम्ड ओवर टाइम का पूरा हिसाब था। और इतना ही नहीं, साथ में था बॉस का एक हैंड रिटन नोट, यू नेवर क्लीन्ड अ सिंगल आर्ट वी नोटिस्ड। बस फिर क्या था, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो आज की स्टोरी ना हमें ये बता रही है कि सडन इंसिडेंट जरूरी नहीं शॉक्ड हो, कुछ इंसिडेंट

ब्रेक के बाद।

दोस्तों कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घरवालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुड़ैल तो नहीं है।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

ईश्वर। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो है अंजलि ऑन एयर। तो भाई देखिए, अंजलि ऑन एयर हो गई है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आना तो बनता है ना। सबसे पहले ये बताइए, क्या कभी आपने आरएसी टिकट पर ट्रेवल किया है? अगर किया है ना तो ये आपको जरूर पता होगा कि एक ही बर्थ पर दो लोगों को वेट करना पड़ता है जब तक टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती। दो लोगों का वेट करना समझ आता है, लेकिन अब इन दो लोगों में ब्लैंकेट कितने, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। तो भाई इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैं लेकर आ गई हूँ, और अपडेट ये है कि दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने इंडियन रेलवे पर 25,000 का फाइन लगाया। और फाइन लगाने का रीजन ये है, आरएसी में ट्रेवल कर रहे दो अलग अलग पैसेंजर को सिर्फ एक ही ब्लैंकेट प्रोवाइड किया गया। फिर क्या था, पैसेंजर ने कर दी कंप्लेंट और बताया कि एक ब्लैंकेट की वजह से कितना फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ है। तभी यहाँ पर कंज्यूमर कमीशन ने ये बताया कि आरएसी के जितने पैसेंजर्स होते हैं वो लोग भी बेडरोल फैसिलिटी के पूरे पूरे हकदार होता है। तो देखिए, आज का अपडेट आपके लिए है, अगर आप भी कभी आरएसी टिकट वाली जगह पर फंस जाए ना तो अपने राइट्स हमेशा याद रखिएगा। और आज की स्टोरी ना हमें एक बात जरूर समझाती है, अपने पैसेंजर राइट्स जानना उतना ही जरूरी है जितना कि टिकट बुक करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सर्विस में कमी हो ना तो आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर होती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। जितना कि टिकट बुक करना, इसको

0: दोस्तों के साथ जाना है तो बोलते यारी दोस्ती होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज इम्पोर्टेंट ही ना लगे।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकलकर देश के एक अलग कोने में जाने का। वही गए हैं फरीदाबाद से निकलकर देश से बाहर, तो चलिए जान ही लेते हैं कि किस्मत कैसी होनी चाहिए। तो चलिए इटली लेकर चलती हूँ मैं आपको। इटली से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर एक लेडी ने करीब 11 करोड़ की लॉटरी जीती। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जब लॉटरी जीती ना, उस लेडी ने कर दी एक गलती। ये थी कि उन्होंने अनजाने में ना विनिंग लॉटरी टिकट को कचरे में डाल दिया, और जब उन्हें पता चला कि वही टिकट विनिंग टिकट था, अब सोचिए कि हुआ क्या होगा, वापस कैसे आया होगा ये लॉटरी टिकट। होना क्या था, कहते हैं ना जब इंसान को अगर वो चीज मिल जाए जो उसने एक्सपेक्ट ना की हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही इन्होंने भी किया। जितने भी सफाई कर्मी थे ना, उन सबकी मदद से लगभग 6 टन कचरे में जाकर टिकट ढूंढना शुरू किया। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यहाँ पर इनकी भी हार नहीं हुई। आखिरकार इन्होंने वो टिकट ढूंढ ही लिया, और टिकट मिलते ही ना ये जो इनकी खुशी थी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो देखा, यहाँ पर इंसिडेंट हमें एक चीज तो जरूर सिखा कर जाती है। तो भाई सीख सिर्फ इतनी सी है, कभी भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी रिसीप्ट कभी भी कूड़े में ना फेंके बिना चेक किए। हमेशा चेक करें, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए ना थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दे।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

चलिए फिर फटाफट से आ जाइए इटली से सीधा फरीदाबाद। अभी इटली की बात की थी, अब बात करते हैं फरीदाबाद में बिजनेस बस की। बिजनेस बस में ना मैं आपके लिए कहानी लेकर आई, और कहानी हमें ये बताती है कि एक छोटा सा आइडिया ना एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, और अगर उस ब्रांड को आप ईमानदारी से निभाए ना तो पूरे देश भर में फेमस हो सकता है। तो भाई देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे होम ग्रोन स्टार्टअप की जिसका नाम था द होल ट्रूथ फूड्स, यानी कि एक इंडियन स्टार्टअप जिसने पैक्ड फूड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस ब्रांड का फोकस है नो हिडन इंग्रेडिएंट्स, यानी प्रोडक्ट पर जो लिखा है वही अंदर है। और आज ये स्टार्टअप्स प्रोटीन बार्स, पीनट बटर और हेल्दी स्नैक्स के लिए देश भर में काफी पॉपुलर हो चुका है। तो देखा, ये कहानी हमें ये बताती है कभी कभी सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया सिर्फ ईमानदारी और क्वालिटी पर होता है। तो भाई अगर आप भी कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं ना, और होम ग्रोन बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने, और फिर देखेगा जो आपका छोटा सा आइडिया है आज एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, ये थोड़ी विस्क

देखो देखो वो आ गया। कौन आ गया? आ गया सोशल स्यापा। बिजनेस तो कर लिया लेकिन आज का सोशल स्यापा का क्या? अंजलि ऑन एयर आए और सोशल स्यापा ना लाए, ये कैसे हो सकता है? और देखो अगर मैं आज के सोशल स्यापे की बात करूँ तो सीधा इंटरनेट से उठकर आप तक पहुंच ही जाए। तो देखिए अगर आज के स्यापे की मैं बात करूँ तो ग्वालियर से आया आज का स्यापा, बहुत दूर से आया। अब इतने दूर से आया तो कैसे आया होगा बाइक पर बैठकर? देखिए अगर बाइक की बात हो ही रही है तो ये बताइए कि एक बाइक पर कितने लोग सही लगते हैं बैठना? एक या दो, हार्डली। लेकिन यहाँ हमने कितने लोगों को देखा? एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 लोग एक बाइक पर सवार होकर गेड़िया लगा रहे थे। अब बात गेड़ियों तक नहीं थी, धीरे धीरे खतरों के खिलाड़ी भी शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ शुरू कर दिया स्टंट करना। और जब ये वीडियो इंटरनेट पर आया ना तो सोशल मीडिया पे बहुत ही धमाल मच गया, और ये धमाल मचाने के लिए ना हमारी ट्रैफिक पुलिस बेस में आ गई। और जब ट्रैफिक पुलिस ने इस बाइक का नंबर देखा ना तो फिर क्या था, फिर हो गया मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट, और इस एक्ट के तहत 6500 का चालान काट दिया गया है। तो भाई देखिए अगर आप भी वायरल होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्टंट करना चाह रहे हैं ना तो इस मोटर व्हीकल एक्ट को जरूर याद रखेगा। और मैं आपको बता दूं जब ये एक्ट लगता है ना तो आपको पैसे भी देने पड़ते, यहाँ पर आपके चाचा काम नहीं आते। यानी कि कहते हैं ना कि मेरे चाचा से बात कर लो, मेरे ताऊ जी से बात कर लो, मेरे अंकल से बात कर लो, आप जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। तो यहाँ पर ना वो सारी चीजें काम नहीं आती। तो अगर आपको इस चालान से बचना है ना तो भाई इस तरह का कोई भी स्टंट मत कीजिएगा। सेफ्टी पहले, सोशल मीडिया बाद में, ये हमेशा याद रखिएगा, और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखिएगा। और साथ ही एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।
1: हाँ हेलो,
2: प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, पता नहीं क्या हो गया है।
1: बताओ क्या प्रॉब्लम है?
2: पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे हर बार।
1: डोंट वरी, इट्स ऑल राइट।
2: अच्छा मैं क्या कह रही थी, एवेंजर्स देखी है? बहुत अच्छी फिल्म है। मेरे पास ना दो टिकट्स थी उसकी। वैसे इस वीकेंड में तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो हेल्प कर दे यार मेरी।
3: किसके चक्कर में क्यों पड़ रही है? बोल दे डायरेक्टली दैट यू लाइक हिम। तू तो जानती है ना उसे।
2: आई एम रियली नर्वस यार।
1: यार टारगेट के नाम पे तो ले रखी है आजकल बॉस ने। तेरा हुआ क्या? क्या बात है?
4: टैलेंट का उनका पार्सल।
1: हां वो आगे से मोटी सी लड़की बैठी ना राइट में।

ice to quiver.

कितनी बार समझाया है कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में इतना मत खो जाओ कि खुद की जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी की वजह से हुआ है। तो भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर 17 साल की एक लड़की सेल्फी लेते वक्त अपना बैलेंस खो बैठी और हाइट से गिर कर सीधा झाड़ियों में जाए फंसी। और जब बात करी नैनम पहाड़ों की तो आपको पता है पहाड़ों पर क्या मिलता है, पहाड़ों पर मिलती है सिर्फ रिवर। तो भाई यहाँ पर अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से सेफली रेस्क्यू किया गया। तो यहाँ पर इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मोटिव इतना सा है कि सेल्फी लेने के लिए ना सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सेल्फी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो सेल्फी मत लीजिए, सिंपल। और सेल्फी लेने के लिए यार बहुत सारे प्लेसेस हैं, वहाँ जाके सेल्फी ले सकते हैं ना, अपनी लाइफ को इस तरह से डेंजर में डालकर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू के लिए, दिस इज नॉट डन। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, साथ ही सुनते रहे रेडियो 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बकवास हैं।
1: अच्छा क्या पता है तुम्हें सोशल मीडिया में अलर्ट रहना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है? नहीं पता था ना, कैसे ही पता होगा। सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रांग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जी बिल्कुल, आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है, और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया ना तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है, बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हाँ जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल रखो।

0: amore. 89.6 Radio Maharani per bus. Ek chota sa break.
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हाँ जी, डू यू नो से अब वक्त हो गया सीधा आने का डिड यू नो पर। जब बात कर ही रहे हैं डिड यू नो की, तो क्यों ना आपको सरप्राइज कर ही दें, और सरप्राइज कम शॉकिंग थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसे जानने के बाद ना आपका सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन हुआ, क्या सच में ऐसा था? तो देखिए, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको पता है जो हम बनाना खाते हैं वो एक्चुअल में टेक्निकली एक बेरी है, हाँ, और जो स्ट्रॉबेरी है वो बेरी नहीं है। देखा, हो गए ना कंफ्यूज, कर दिया ना मैंने ब्रेन रोट आपको। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। और ये सुनने में ना थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन बोटैनी के हिसाब से बनाना बेरी की कैटेगरी में आता है, जबकि स्ट्रॉबेरी बेरीज की कैटेगरी में नहीं आती है। मतलब नाम पर मत जाइएगा, साइंस की डेफिनेशन कुछ और ही कहती है, और इस डेफिनेशन को जरूर याद रखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का फैक्ट मैंने आपको बता भी दिया और आपको ब्रेन रोट कर भी दिया। कल फिर से आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर, लेकिन तब तक के लिए बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी है, और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का फैक्ट मैंने आपको बता भी दिया और आपको

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। और चलिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई हैं और फिलहाल वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती चलाने का। और देखिए भाई, जब अंजलि आने ये रोती है ना, तो अपने साथ अंजलि वाली वाइब जरूर लेकर आती है। और अब इस वाइब की बात करें तो इसका नाम है फरीदाबाद की पहेली। तो भाई देखते हैं आज कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। तो पहेली के साथ आ गई हूँ। पहेली कुछ इस तरह से है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने और शॉपिंग करने आते हैं। मेरी पहचान सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया तक है। रंग, कला, हैंडक्राफ्ट और कल्चर, सब कुछ एक ही जगह मिलता है। बताइए मैं हूँ कौन? चलिए भाई, इतना टफ नहीं करते हैं, आपके लिए ना एक हिंट छोड़ कर जाती हूँ। और हिंट ये है कि मेरा नाम एक झील से जुड़ा हुआ है। सो माय डियर लिसनर्स, आपको पता है ना आपको जवाब कहाँ देना है। तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और इस पहेली का जवाब मैं रिवील करूंगी आपसे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए। प्यार से ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो चल रहा है अंजलि ऑन एयर। दिमाग की बत्ती जलाने का काम मैंने किया था, यानी कि फरीदाबाद की पहेली लेकर आई थी और हिंट भी देकर गई थी और बहुत सारे जवाब हमें मिले। कुछ जवाब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, लेकिन फाइनली हमें फरीदाबाद की पहेली का सही जवाब मिल गया है। तो चलिए पहले आपको जवाब सुना देते हैं।
1: हेलो अंजलि, जो तुमने अभी पहेली पूछी है तो इस पहेली का आंसर है सूरजकुंड। जहाँ हम सब जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना, घूमना, खाना पीना और हर साल इंतजार रहता है सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही कहा, जवाब है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छी याददाश्त है आपकी और इसी सही जवाब के लिए आपके लिए बनती है ये जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मॉनिक और रेडियो महारानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, साथ ही सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

फिट है तो हिट है, फिट बॉडी फिट माइंड और फिट फरीदाबाद। हाँ जी फरीदाबाद वालों, फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ, यानी कि अब वक्त हो गया आपको फिट करने का। तो चलिए भाई, पूरा फरीदाबाद मिलकर होता है फिट फरीदाबाद। तो भाई आज का हेल्थ मंत्र है ब्रेन स्ट्रोक से बचाव। यानी कि डॉक्टर्स के मुताबिक स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कुछ हेल्दी हैबिट्स को रोज की लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। और बस ये हैबिट्स जब आप डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करने लग जाते हैं ना, फिर आपको खुद भी पता नहीं लगता कि आप कितने ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको करना क्या है, आपको अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करना है, और साथ ही थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं, बार बार चक्कर है या फिर हार्ट बीट इरेगुलर लगे तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, बिकॉज हेल्दी हैबिट्स ही हेल्दी फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब बस इस मंत्र को याद रखना है। और आज का फिटनेस वाला फंडा यही था कि खुद को किस तरह से प्रायोरिटी बनाना है। तो भाई आज ही खुद को प्रायोरिटी बनाइए और लंच बॉक्स में ना कुछ हेल्दी लेकर जाइए। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मल्टीप्लस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे

0: हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। तो देखिए भाई, स्वागत मैंने आपका फिर से कर दिया है, और दोबारा से स्वागत इसलिए किया है क्योंकि अब मैं आ गई हूँ आपके लिए फरीदाबाद की कुछ बातें लेकर। तो चलिए इम्पोर्टेंट बातों पर अब नजर डाल ही लेते हैं। NIT फरीदाबाद की कई एरियाज में पीने के पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान सामने आ गया है। तो भाई NIT वालों, अब तक आपको पानी की प्रॉब्लम होती थी ना, ये प्रॉब्लम अब आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, बिकॉज एक नया प्लान आया, और प्लान ये है 250 करोड़ का बूस्टर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, जिसका एम है करीब 5 लाख लोगों तक पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करना, और इसके साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज है फरीदाबाद के लिए, स्पेशली NIT एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है आपके लिए। और बस अब देखना ये है कि कितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नजर आता है हमें। जब तक ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नहीं आता, तब तक आप हमें बता सकते हैं NIT या फिर आसपास के एरिया में किस जगह पर वाटर सप्लाई का क्या हाल है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ड्राइव, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: I like it too. Awesome.

0: Punjabi pop culture runs through the blood.
1: Cinema ka capsule. Welcome back to Cinema ka capsule. और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है. मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है. फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है. अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है. डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है. मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी. लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है. इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी. अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो. सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है.

हाँ जी, देखिए भाई बातें बहुत सारी हो गई हैं और बातें करते करते ना अभी मेरी नजर इस घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि 11 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे आई थी और 11 बजने वाले हैं, यानी कि आज मैंने बहुत सारे गप्पे शप्पे आपके साथ लड़ाए हैं, बहुत सारी अपडेट्स आपको दी है, इंफोटेनमेंट का डबल डोज मैं लेकर आई थी। तो भाई अभी ये घड़ी इशारा कर रही है कि अंजलि बस बहुत हुआ बेटा, अब चलिए यहाँ से, बिकॉज आज जाएंगे तभी तो कल आऊंगी ना। सो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। और जाते जाते ना एक बार ये जरूर बता देती हूँ कि आज आखिर मेरे टिफिन में क्या है। सो भाई आज भी मैं बिना टिफिन के आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ चीट मील। सो कभी कभी ना खुद को एक रिवॉर्ड दे देना चाहिए। इस पूरा वीक ना मैंने ट्राई किया था कि कोई जंक नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस कहाँ रख पाती हूँ ना, तो इस बार भी नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो यही होगा मेरे साथ। तो अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना टिफिन एंजॉय करूंगी यहाँ से जाने के बाद, एक गर्मा गर्म कॉफी पीने वाली हूँ और फिर कल आऊंगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वाइब के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा और सुनते रहिए रेडियो महारानी पर। ये शानदार सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, देखिए भाई बातें बहुत सारी हो गई हैं और बातें करते करते ना अभी मेरी नजर इस घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि 11 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे आई थी और 11 बजने वाले हैं, यानी कि आज मैंने बहुत सारे गप्पे शप्पे आपके साथ लड़ाए हैं, बहुत सारी अपडेट्स आपको दी हैं, इंफोटेनमेंट का डबल डोज मैं लेकर आई थी। तो भाई अभी ये घड़ी इशारा कर रही है कि अंजलि बस बहुत हुआ बेटा, अब चलिए यहाँ से, बिकॉज आज जाएंगे तभी तो कल आऊंगी ना। सो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। और जाते जाते ना एक बार ये जरूर बता देती हूँ कि आज आखिर मेरे टिफिन में क्या है। सो भाई आज भी मैं बिना टिफिन के आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ चीट मील। सो कभी कभी ना खुद को एक रिवॉर्ड दे देना चाहिए। इस पूरा वीक ना मैंने ट्राई किया था कि कोई जंक नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस कहाँ रख पाती हूँ ना, तो इस बार भी नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सो यही होगा मेरे साथ। तो अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना टिफिन एंजॉय करूंगी यहाँ से जाने के बाद, एक गर्मा गर्म कॉफी पीने वाली हूँ और फिर कल आऊंगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वाइब के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा और सुनते रहिए रेडियो महारानी पर। ये शानदार सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: करते हो मुझसे। 7 साल लड़के एडजस्ट किया, इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी एडजस्ट कर पाएंगे। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं डिवोर्स होता। मैं हमेशा तुमसे ब्रेकअप करती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट थे, शायद मैं ही तुम्हारे लिए गलत।
1: अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो तुम मुझे रोकोगे?
0: तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए गलत।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

एक सिंपल सी लाइन मैंने कहीं रीड करी थी जिसके साथ आज शो की शुरुआत हम करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। एम्पावर दी वुमेन, एम्पावर दी वर्ल्ड, ये एक सिंपल सी लाइन सुनने में है, बट इसके पीछे का जो मीनिंग है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो एक अलग फीलिंग आने वाली है। एम्पावर दी वुमेन मतलब अगर आप एक वुमेन को एम्पावरफुल बना देते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं कि वो सशक्त हो, अपने काम करने के लिए खुद आगे बढ़ सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट एक वुमेन आप बना देते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड को एम्पावर कर देते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ इनहेंस कर दे सकते हैं। ये पावर होती है एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और अगर आप ये कर सकते हैं तो समझिए आप एक बदलाव लाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में और आपके स्टेट में आ रहा है, इधर हर जगह एक चेंज, एक रेवोल्यूशन आने की शुरुआत हो चुकी है, अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन को आगे बढ़ाने की सोच भी रख ली है दिमाग में। यू विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब

0: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरज कुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए। मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का, अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे। तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही हैं, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

शी हैव चेंज द वर्ल्ड और शी हैव एक्सप्लोर द वर्ल्ड फॉर अपकमिंग गर्ल्स. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ. अक्सर ये होता है ना, एक वुमेन एक नई फील्ड एक्सप्लोर करती है और उसके बाद बहुत सारी वुमेन उसे देख के उस फील्ड में आगे बढ़ने लग जाती हैं. ऐसा ही कुछ आज की जो हमारी वुमेन है उन्होंने करके दिखाया था, जो आज हमारे साथ शी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड में है. मैं बात कर रहा हूँ किरण बेदी मैम की. कभी पुलिस की जो वर्दी है ना, वो सिर्फ पुरुषों का या पुरुषों का ही सिंबल माना जाता था या उनकी ही वैकेंसी वहां पर आती थी. फिर आई किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर. 1972 में उन्होंने वो कर दिखाया था जो शायद इससे पहले भारत में किसी ने सोचा तक नहीं होगा. अपनी ईमानदारी, डिसिप्लिन और निडर अंदाज से उन्होंने पुलिस को सर्व किया और एक नई पहचान बना ली. ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर जेल सुधारने तक उनके कई फैसलों ने सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव ला दिए. और किरण बेदी सिर्फ एक कानून की रक्षक नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं का वो विश्वास है, वो हिम्मत है और वो मेहनत करते रहने के पीछे की मिसाल है. और ये कहानी उन सभी लेडीज को मोटिवेट करती है जो सोचती हैं कि इस फील्ड में वुमेन जाके क्या ही कर पाएगी, कैसे ही कर पाएगी. तो किरण बेदी ने कहा है, कोई भी ऐसी फील्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक वुमेन नहीं कर सकती, यानी नारी नहीं कर सकती. नारी ठान ले तो नारी सब कर सकती है, इसीलिए वो है नारी नंबर 1. 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके.

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बापा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

बाबू वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक बिहारी सौ पे भारी, पर ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई मेरे को लग रहा है अपने प्लानिंग। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की उस महिला की जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है भाई साहब, और क्यों ना हो। मैडम ये क्या हरकत थी और क्या जरूरत थी आपको ये चीज करने की? आपको मालूम है बिहार एक ड्राई स्टेट है जहां पर लीगली आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते जो वहां पर बैन करी जा चुकी है और बहुत सालों से बैन है। तो ये क्या तरीका था, फर्स्ट क्लास एसी की आपने ट्रेन कराई, टिकट कराई, उसके बाद उसमें आप दो दो अटैचियां भर के लेके जा रही है, वहां शक हो गई पुलिस को कि कुछ तो गड़बड़ है गुरु, इनकी जो ड्रेस है वो तो मैच कर रही है बट जो इनका बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन करी, उनको रोका, तो बैग खोला तो बैग के अंदर से एक बोतल दो बोतल क्या हजारों बोतलें निकल गई भैया। ये क्या क्या करने के मूड से आप लेके जाए, ब्लैक में सप्लाई करने के मूड में लेके जा रही थी या खुद इतना कंज्यूम करना चाह रही थी, ये नहीं समझ आ रहा। बट वहां जो आप एटीट्यूड से खड़ी हैं वीडियो में, पकड़ने के बाद भी फोन मिला रही है कि रुको अभी कोई छुड़वा देगा, तो मैडम पुलिस है वो, और आपको इलीगल चीज करते हुए पकड़ा गया है जो बिहार के अंदर एटलीस्ट लीगल नहीं है, बाकी स्टेट में लीगल होगी। और ऐसे केस बिहार से क्यों आते हैं जब वहां पर बैन है, तो बिहार वालों को ऐसा क्या है भाई, बिहार के बाहर जाओ अगर कुछ आपको ऐसा कंज्यूम भी करना है तो, उस स्टेट के अंदर ले जाने के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हो। इससे पहले भी बहुत बार पकड़े गए, फिर से पकड़े गए, आगे की कहानी भी नहीं पता फिर कब पकड़ी जाए। बट ये जो एक फीमेल के थ्रू पकड़े गए, ये मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग था यार। मेल तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो ब्लैक कर रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, बट फीमेल, माना इक्वालिटी भाई, कंधे से कंधा मिला के चलना, बट ऐसे भी नहीं मिला के चलना यार कि इन चीजों में आप बिल्कुल इक्वल इक्वल आ जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज मैं एक ऐसे लीगल राइट की बात वुमेन्स की करने वाला हूँ जो शायद मुझे ही आज से पहले नहीं पता थी, ये मुझे आज पहली बार पता चली है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ है। राइट टू फ्री लीगल एड, अब इसका मतलब क्या है? मुफ्त कानून मदद का अधिकार। अब आप सोच रहे हो ना, मुफ्त कानून मदद का अधिकार, ये सब क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक भारत में रहने वाली महिला हैं और आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, वकील की फीस देने का पैसा नहीं है, कोर्ट के खर्चे उठाने का पैसा नहीं है, तो आपके पास ये राइट यूज करने का अधिकार है जो राइट बनी है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में, जिसके तहत ये कहा जाता है अगर आपके पास अपने वकील को देने के लिए पैसा नहीं है या कोर्ट या लीगल चीजों के लिए पैसा नहीं है तो आप यूज कर सकती हैं फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त में आपकी मदद की जाएगी एक लीगल केस को लड़ने के लिए या उसे कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ये राइट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास है। कोर्ट फीस में और कुछ नए कानून जो खर्चे हैं उनमें आपकी मदद की जाएगी, पूरी तरह से फ्री नहीं है बट आपकी हेल्प की जाएगी, कितना कम से कम में वो चीज आपका करवाया जा सकता है। तो ये राइट सिर्फ एक महिला के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DLSA, अदरवाइज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NALSA के अंदर आती है। आप वहां पर जाके मदद मांग सकते हैं ऐसे किसी केस में जब आप सक्षम नहीं हैं कोर्ट फीस भरने के या फिर अपने किसी भी वकील की फीस भरने में, तब ही आप मदद ले सकते हैं। पहले आपको वो प्रूव करना होगा कि आप सक्षम नहीं हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दे।

फरीदाबाद तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

ये बात हम कभी नोटिस ही नहीं करते हैं ना, और इस साइड से हम कभी सोचते ही नहीं है मर्द के। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। आखिर चाहिए क्या एक मर्द को, कभी आपने ये सोचा है? देखिए, उसे ज्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना उसे महंगे गिफ्ट चाहिए, ना उसे शायद आपसे बहुत ज्यादा तारीफ चाहिए। हो सके तो बस उसको इतना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसे बोले ना तुम मर्द हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तो आप बस उसके कंधे पे हाथ रख के आराम से उससे ये पूछे, आज थक गए होगे, कोई बात तो नहीं, बताओ अगर कुछ बताना चाह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में। और अगर वो पलट के आपको बता दे तो वही आपकी पॉजिटिव जीत है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा था जो शायद बाहर दुनिया में किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, बट उसने आपको चुना है वो शेयर करने के लिए, तो आप उसकी लाइफ का वो खास पार्ट हो। और अगर आप भी नहीं पूछ रहे हो तो शायद वो किसी को वो बात शेयर नहीं कर पा रहा है। तो एक मर्द को क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, उसे बता सके, और वो खुद से आगे नहीं बताएगा तो प्यार से पूछने वाला इंसान सबसे पहला उसको चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.

हाँ जी, तो 27 तारीख को आप आ रहे हो ना सूरज कुंड मेला ग्राउंड में? अरे अभी तक प्लान नहीं बनाया? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और प्लान नहीं बनाया तो भैया अब बना लो, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 27 तारीख को होने वाली है। सूरज कुंड मेला ग्राउंड से ये बिगिन होगी, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले तो यही बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी कर लो www.halfmarathon.in पे जाके, और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे इट्स आरजे तुषार के नाम से, वहां आके पूछ लेना। और ये जो मैराथन है ये 3 फेज में होने वाली है। एक होने वाली है 21.1 किलोमीटर, फिर होने वाली है 10 किलोमीटर, फिर होने वाली है 5 किलोमीटर। तो ये 3 तरह की होने वाली है, आप जिसमें बेस्ट आपको लग रहा है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर वाली फन रन होने वाली है जो आपके लिए बहुत हैक्टिक नहीं होने वाली है, और सारे जो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मैच करने वाली है, एक प्रोफेशनल लेवल मैच करने वाली है जिसमें टाइम वगैरह सब वैसे ही नोट करा जाएगा। प्लस प्राइज मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस रेस का होने वाला है, और इसके पीछे का थीम ही है ना एक हेल्थ के लिए आपके कदम उठाने का टाइम आ चुका है। और नशा मुक्त हरियाणा जो मेन मोटिव है इस पूरी मैराथन का, वो हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। तो 27 तारीख इस मैराथन का पार्ट बनना 1% भी ना भूलिए, हो सकता है आपकी फिटनेस जर्नी यहीं से बिगिन हो जाए। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशन के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

बहुत सारे पंजाबी गानों में, बहुत सारे बॉलीवुड गानों में हमने ये अक्सर सुना है, मैनू जुत्ती ले दे, जुत्ती तेरी चमक दी, जुत्ती तेनू फब दी, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुनी। बट ये जुत्ती की हिस्ट्री क्या है? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये जो फीमेल जुत्ती है ना, इसकी कहानी भारत की परंपरा से जुड़ी हुई है। जुत्ती का जन्म लगभग 400 साल पुराना है। मुगल काल में इसकी शुरुआत करी गई थी, तब राजाओं महाराजाओं के शाही पोशाक का ये पार्ट हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये और सुंदर बनती गई और धीरे धीरे पंजाबी, राजस्थानी, उत्तर भारत में इसका जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली गई। वहां पर लोग इसे और ज्यादा स्केल पर पहनने लगे, अलग अलग फैशन सेंस के साथ पहनने लगे। पहली की जो जुत्ती होती थी ना, वो चांदी की होती थी, हाथ से करी गई एम्ब्रॉयडरी की होती थी। और इसमें धीरे धीरे चेंज करते हुए इसे नॉर्मल जुत्ती का जो आज हम रूप देख रहे हैं उसमें लेके आए थे। और जुत्ती की सबसे खास बात होती है उसके जरी का काम, मोती का काम, मिरर्स का काम, जो उस जुत्ती के फैशन को एनहेंस कर देते हैं। आज फीमेल जुत्ती की परंपरा फैशन का एक परफेक्ट मेल हो चुकी है। जब जब उन्हें एथनिक कुछ पहनना है या मॉडर्न आउटफिट में एथनिक का कुछ टच देना है तो वो जुत्ती का यूज करती है। और पंजाबी कल्चर में जुत्ती का एक अलग ट्रेडिशन है और एक अलग सा रिवाज है। अगर आपने जुत्ती पंजाब में पहन ली है या पंजाबी जुत्ती पहन ली है तो वो रौब आपका वहां पर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: बोल, पता है ना इस वाले के?
1: किसे नहीं पता।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आज मेरा लर्निंग सेशन है, आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे मैं जितना ग्रैब कर सकता हूँ, जितना सीख सकता हूँ ना, वही मेरी बेस्ट लर्निंग होने वाली है। डॉक्टर काची नागिया आज हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करा है, प्लस इसके साथ साथ फैशन फील्ड से बहुत लंबे समय तक एसोसिएट रही थी। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू तुषार जी हमें बुलाने के लिए और ये चांस देने के लिए, ग्रेटिट्यूड।
0: मैम ये मेरे लिए एक न्यू चांस होने वाला है, क्योंकि आपकी जब मैंने ऐसे जर्नी के बारे में जाना, फैशन डिजाइनिंग, फैशन फील्ड से रहने के बाद फिर आपने वेदिक टैरो एस्ट्रोलॉजी इसमें स्विच लिया, तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है पूरी आज जर्नी में, कि मैं दो चीजों के बारे में जान सकता हूँ, एक तो फैशन वाली चीज के बारे में भी और टैरो कार्ड और एस्ट्रो के बारे में भी। बट स्टार्ट करने के लिए मैं यही जानना चाहता हूँ, ये फैशन से टैरो वाली जर्नी, ये स्विच कैसे आया?
1: मैं शुरू से ही बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। ये ना मुझे, मतलब मैं शायद 10th में 11th में ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मेरा एक फैक्ट्री है और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे बैग लेके जाती होती थी कि मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जा रही हूँ। और मेरी मॉम कभी कभी हंसती थी बिकॉज ये क्या है ना। फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, फैशन की, देन आई गॉट मैरिड और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया, आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, मेरा अपना एक ब्रांड है एंड एवरीथिंग वॉज गुड, लाइक यू नो, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद रिलायंस थ्रू एंड थ्रू, यू नो, बिजनेस पर्सन। फिर 2018 मुझे टैरो में हमेशा इंटरेस्ट था, बट 2018 मैं किसी से करवाती होती थी और हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूछ लेती थी। फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो। 2018 मेरी मॉम की डेथ हो गई, तो उन्होंने एक पंडित जी के पास, पहली बार हम गए तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए बने हो। तो तब मुझे लगता था एज ए बिजनेस पर्सन हीलिंग कहाँ यार, हम तो बिल्कुल ही अलग फील्ड से हैं। और जब मॉम की डेथ हुई तो ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए 3 महीने सिर्फ एक पंडित जी के पास बैठ गई, क्योंकि मेरा मन अशांत था, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन आई टुक एडमिशन इन भारतीय विद्या भवन, आई डिड टैरो में PhD, आई डिड हीलिंग रेकी कोर्सेस, सो एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: PhD इन टैरो। मैम ये जो आपने डिफरेंस बताया है और दोनों के बीच का रिलेशन बताया और कैसे आए कि आपको रुकना नहीं, आपको अपने चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको ढूंढना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, और ऐसी ही बेस्ट चीजें आगे हम आपको और गाइड करेंगे कुछ गानों के बाद, ओनली ऑन रेडियो महारानी, कुछ हटके।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

0: हम सब अपनी लाइफ में ना बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें बैलेंस करना ही भूल जा रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर कांची नागिया। मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यही बात आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है, जिसमें स्ट्रेस भरी लाइफ हो रही है, बहुत सारे करियर स्विचेस हो रहे हैं, फैमिली और पर्सनल लाइफ की जो ग्रोथ है उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के बीच में, तो ऐसी चीज पे आप क्या सलाह देना चाहेंगी या ये चीज आप कैसे बैलेंस कर रही हैं?
1: छोटी सी सलाह ये है औरतों के लिए कि एक तो यू कांट स्टॉप इन योर लाइफ, है ना, एक फुल स्टॉप नहीं कर सकते। जब मेरे ट्विंस होने वाले थे तो मैं बेड रेस्ट पे थी पूरा एक साल, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री तब भी चलाई, मैं वो घर ले आई फैक्ट्री, मुझे मना हो गया तो सारे लोग घर बैठ के काम करते थे, है ना। जब हमने ये शुरू किया तो आप सब चीजों के लिए निकाल सकते हो वक्त। मैं ट्रैवल भी करती हूँ और अब मेरी इच्छा है कि मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाऊं जहां मैं हर मंदिर में जाके अपना एक अलग एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर वगैरह करूँ। आप कर सकते हो, मल्टीटास्किंग एक औरत कर लेती है, कर सकती है, आपको खाली टाइम डिवाइड करना आना चाहिए, है ना, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट भैया, सब कुछ कर लो।
0: मेरे को लगता है कि मैम ने जो बात बताई है वो सुन के या वो चीज समझ के अब हमें बैलेंसिंग करना तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हुए आएगा, वो बात मैं बिल्कुल बिलीव कर रहा हूँ, बट हमें करना आज से शुरू करना है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

0: यहाँ पर हम आज अपने एक्सपर्ट से यानी कि हमारी गेस्ट से कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, कांची मैम यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें लोगों को सजेस्ट करती रहती हैं, बट ऐसा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस आपका है जहां पर आपने किसी को कुछ गाइड किया और वो सक्सेस स्टोरी आप यहां शेयर करना चाहते हो, या उन्होंने आके आपको कुछ फीडबैक उसके बाद दिया हो और आज वो आप यहां पर शेयर करना चाहते हैं?
1: तो मेरे पास अब इस बात को 2 साल हो गए, 2 केसेस थे। मैंने कुंडली पढ़ी उनकी, उसमें मुझे अब्यूज दिख रहा था, है ना, लेडी के लिए। जब वो हस्बैंड वाइफ आए तो वो किसी एंगल से, क्योंकि हस्बैंड एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे पास आते थे, मुझे कहीं अब्यूज लगता ही नहीं था क्योंकि वो इतने अच्छी तरह बात करते थे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ है प्रॉब्लम। फिर वो दोबारा जब आए तो मेरा मन परेशान हो गया, क्योंकि कुंडली में मुझे दिखता था, कार्ड्स में भी दिखता था, और वो अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ते थे, है ना। फिर मैंने अपने फ्रेंड से कुंडली पढ़वाई, उन्होंने कहा हाँ अब्यूज है और तगड़ा वाला अब्यूज है। एक बार उनकी वाइफ अकेले आई कुछ सूट सिलवाने, तो मैंने पूछा, तो मतलब गूज बम्स आ गए मुझे जब पता लगा कि कितना अब्यूज है, है ना। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो यू नीड टू गेट इनटू अ थेरेपी। सो टुडे शी इज क्वाइट बैलेंस्ड, है ना, शी इज कम 50% कम आउट ऑफ इट। सेकंड केस में एक और कहूंगी, उसमें बेटा और मदर आए, 27 ईयर ओल्ड बेटा था, मदर के साथ आए, मुझे एक और अब्यूज केस लगता था। मैंने जब उनको पूछा तो वो अकेली थी, तो उन्होंने अपने पैर दिखाए जहां मारा हुआ था हस्बैंड ने, फिर रोज मारते थे, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोफेशनल हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। आज वो लेडी अपना घर है उनका और एक अच्छा कैरियर है, है ना, और आई एम हैप्पी टू सी हर, शी इज गॉट आउट ऑफ। तो मैं घर तोड़ने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जहां आपको अब्यूज मिल रहा है वहां से आपको हिम्मत करके निकलना पड़ेगा।
0: ये इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, हम पास्ट अपने फैमिली में देखते हुए आ रहे हैं और वो भी शांत रह जाते थे, इस वजह से आगे की जनरेशन भी शांत रह जाती है। बिल्कुल,
1: एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, तो मैंने जब उनका पास्ट लाइफ किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मुझे लगा कि ये हर लाइफ में एक अब्यूज था और ये अब यहाँ तोड़ना चाहिए इसको, इस साइकिल को, अगर अभी भी नहीं तोड़ेंगी तो आगे भी ऐसे ही जाएंगे। सो शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, शी इज अ लाइफ कोच नाउ, you know, and beautifully running her life.
0: तो मैम इसके लिए तो थैंक यू, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने किसी की लाइफ में एक ऐसा चेंज लाके दिया कि वो अपनी लाइफ में इस ग्रोथ या इस लेवल पे कर पा रही है।
1: अब मुझे उनको देख के अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच मैम ये बात यहाँ पर रखने के लिए, और मेरे को लगता है जितने भी लिसनर्स है ना वो इस चीज से बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत कुछ कनेक्ट करने वाले हैं और बहुत कुछ नया यहाँ पर उनको सीखने मिलने वाला है आज इस इंटरव्यू के बाद। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: मैम ये थोड़ा सा सीरियस वे में भी जा सकता है, या आप इसे बेटर कैसे एक्सप्लेन कर सकती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, डॉक्टर कांची नागिया यहाँ पर हमारे साथ हैं और इसी के बारे में हम आगे जर्नी में बात कर रहे थे। मैम रिलेशनशिप और मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, कंसर्न करने आते होंगे, रीडिंग कराने आते होंगे वैदिक के थ्रू या टेरो के थ्रू, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, इंसान क्या फेस कर रहा है, या आप उन्हें किस तरह से अप्रोच करके या किस तरह से आप उन्हें सजेस्ट करते हैं?
1: एक वुमन को ये मैसेज देना चाहिए कि अपनी ना स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। यू कैन डू इट, है ना, नॉट एट 30, नॉट एट 20, 30, 40, 50 पे तो कभी भी नहीं, है ना। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन लाइफ, फटाफट करो, रुको मत, है ना। यू नीड टू कीप वॉकिंग एंड व्हेन यू वॉक देन ओनली यू विल फाइंड योर मंजिल, है ना।
0: बिल्कुल। अब मेरे माइंड में एक सवाल और स्ट्रक हो गया, PhD इन टैरो मैम क्या है वो पूरी स्टडी? बहुत सारे लोग मेरे को लगता है सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया पे सीख लिया और फिर लोगों की रीड करना शुरू कर दिया।
1: हाँ जी,
0: बट आपने वो प्रॉपर PhD करा है, तो क्या एक बड़ा डिफरेंस इसके बीच में आप बताएंगे?
1: मुझे लगता है सीखने की कोई सीमा नहीं होती, निकलता ये सब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है, बट टैरो एक फॉरेन मोडालिटी है। मैंने लंदन से भी सीखा है, अभी मैं 3 दिन का कोर्स भी करके आई हूँ। PhD इन टैरो में क्या है कि पूरे इंटायरली हम अंदर तक जाते हैं, एक कार्ड के मतलब के, एक एक जो उसके अंदर फोटोग्राफ के अंदर सिंबल है उसका क्या मतलब है, और वो दूसरे कार्ड के साथ क्या दे रहा है, उसके प्लैनेट्स क्या है, आपको कब उसकी ज़रूरत है नहीं है, तो और केस स्टडीज़ होती है, है ना। तो उससे क्या होता है, जब आपके पास एक कोई जना आता है, इंट्यूशन भी बहुत मैटर करती है इस सब में, तो मैंने मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाई, लेकिन साथ साथ PhD करने के बाद जो इन डेप्थ एक हफ्ते के कोर्स में नहीं आ सकता, है ना, तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप इन डेप्थ नहीं जा सकते। तो टचवुड, अभी जब कोई मुझे पलट के कहता है ना कि मैम आप कैसे कर लेते हो, जो बोलते हो वो शाम तक हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की।
0: मेरे को लग रहा है जब मेंटोर आपकी तरह हो या गाइडेंस आपकी तरह मिल रहा हूँ मैम, तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जिस स्मूथनेस के साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या आप क्या स्टेप फॉलो करती हैं, तो हैट्स ऑफ मैम कि आप ऐसे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रही हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। थैंक यू सो मच उन सबके बिहाफ पे मैं यहाँ पर आपको आज बोल रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
5: विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? अच्छा, आज का दिन आपको लेजी सा नहीं लग रहा? क्योंकि मेरे को तो बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरी बातें सुनकर आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, और क्या पता आपसे बात करते करते मेरी नींद भी खुल जाए। इसी के साथ मैं हूँ आरजे पलक, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर, जहां अगले 2 घंटे बातें होंगी मूवीज की, OTT की, सॉन्ग्स की, ट्रेलर्स की, और बॉलीवुड की सारे अपडेट्स की। तो आप जहां भी हैं कंफर्टेबल हो जाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और मेरी कंपनी एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, 2 से 4 बजे तक बोरिंग होने की परमिशन मैं बिल्कुल नहीं देती भाई। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल रखो।

फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.

0: Yeah.
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, आपको तो याद होगा कि स्कूल या कॉलेज में जब कभी आपको स्टेज पर अवार्ड मिलता था तो आप तो खुश होते ही थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होती थी, क्योंकि यार वो मोमेंट ही इतना स्पेशल होता है ना, नाम अनाउंस होना, स्टेज पर जाना और सामने पेरेंट्स की आंखों में वो ये हमारा बच्चा है वाला मोमेंट, माय गॉड अमेजिंग। और कुछ ऐसा ही ब्यूटीफुल मोमेंट देखने को मिला यामी गौतम के साथ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में यामी को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और जब यामी स्टेज पर अपना अवार्ड रिसीव कर रही थी तो उनके हस्बैंड आदित्य धर प्राउडली क्लैप करते हुए नजर आए और यामी ने अवार्ड रिसीव करने के बाद कहा कि वो अभी भी इस मोमेंट को फील करने की कोशिश कर रही हैं और नेशनल अवार्ड मिलना उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और सच कहूं तो अवार्ड जब मिलता है तो हमें तो खुशी होती ही है, लेकिन जब उसी चीज की खुशी हम अपनों के चेहरे पर देखते हैं ना तो वो मोमेंट डबल स्पेशल हो जाता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।
1: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली। ओहो

0: everyone. Myself, Dr. Rajni Beniwar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे ज़रूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग. सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ. AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा.

रेडियो महारानी कुछ हटके। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हॉरर फिल्म देखते वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इस फिल्म में जो भी भूत है उससे हम एक्चुअल में डरेंगे या नहीं, है ना। लेकिन अजय देवगन की नेक्स्ट सुपर नेचुरल फिल्म में कहानी सिर्फ डराने तक लिमिटेड नहीं होने वाली है, क्योंकि अजय देवगन एक बार फिर सुपर नेचुरल हॉरर जोन में वापस आ रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल रिपोर्टेडली लॉक हो चुका है, जिसका नाम है सूर्य स्पर्श। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित जुगराज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी पूरी जो है ना वो गरुड़ पुराण से इंस्पायर्ड होगी। और आप तो जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लाइफ, डेथ, कर्म और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे सब्जेक्ट्स का जिक्र मिलता है। इस टाइटल से पहले इसका एक और टाइटल रखा गया था जिसका नाम था गृह प्रवेश, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने सूर्य स्पर्श टाइटल फाइनल किया है और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है। और अजय देवगन का सुपर नेचुरल जोन कोई नया नहीं है, क्योंकि शैतान और काल के बाद अब देखना ये होगा कि इस मूवी में जर का लेवल कितना ऊपर जाता है। फिलहाल फिल्म की रिलीज में टाइम है, लेकिन इससे पहले अजय दृश्यम 3 और साथ ही साथ गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं। तो भाई अजय देवगन आ रहे हैं गरुड़ पुराण की कहानी लेकर। अब भूत से डरना है या उसकी पूरी स्टोरी से ही डरना है ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली 9.6 रेडियो महारानी पर।

0: सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घरवालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

फिटनेस का प्लान बनाते वक्त हम सबका फेवरेट डायलॉग होता है ना कि भाई कल से हम पक्का सुबह उठ जाएंगे 6 बजे और भागना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये कल से पक्का होगा वाला दिन ना आता ही नहीं है। तो अगर आपका भी फिटनेस कल से वाला प्लान अब तक पेंडिंग है तो 27 सितंबर को उस पेंडिंग प्लान को ना रियलिटी बनाने का परफेक्ट चांस है। जी हाँ, सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स में होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां आपके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ऑप्शंस है भाई। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर का टाइम्ड रन और 5 किलोमीटर की फन रन। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं भाई, रनर्स के लिए 10 लाख रुपए तक की प्राइज मनी भी रखी गई है। लेकिन इसका असली मोटिव सिर्फ मेडल या प्राइज मनी नहीं है, इसका असली मैसेज है कि फिट हरियाणा हो, नशा मुक्त हरियाणा हो। तो शूज रेडी रखिए, एक्सक्यूजेस को साइड में रख दीजिए। अब मिलते हैं आपसे सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स में 27 सितंबर को। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनकी आवाज सुनकर हमारा मूड ऑटोमेटिकली बदल जाता है, और लकी अली की आवाज उन्हीं आवाजों में से एक है। अब एक बार फिर उनकी वही सोलफुल आवाज सुनने को मिलने वाली है दृश्यम द कंक्लूजन के अपकमिंग सॉन्ग मुस्कुरा दो में। सॉन्ग का टीजर रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसमें लकी अली की आवाज ही सिर्फ कुछ सेकंड्स की झलक ही ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए काफी रही। इस गाने को लकी अली ने गाया है और लिरिक्स दिए हैं मनोज मुंतशिर ने, और म्यूजिक कंपोज किया है रोचक कोहली ने। और ये गाना फैमिली रिलेशनशिप्स और उनके बीच के इमोशनल बॉन्ड को सेलिब्रेट करता है। और हाँ, पूरा गाना अभी आने ही वाला है। कब आने वाला है ये तो सरप्राइज है यार, बाद में बताऊंगी। वही दृश्यम द कंक्लूजन आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर को। अब विजय सालगांवकर के फाइनल चैप्टर में क्या ट्विस्ट है ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है कि लकी अली की आवाज और दृश्यम की इमोशनल दुनिया, भाई कॉम्बिनेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी। कुछ हटके कुछ हटके कुछ हटके।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

बहुत कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दे।

हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है। हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है, तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लीजिएगा। हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कॉलेज लाइफ भी कितनी मस्त होती है ना। एक क्रश हो, लेट नाइट पार्टीज हो और ऊपर से लव ट्रायंगल। भाई अटेंडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगी ना इन सब चीजों के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वीर पहाड़िया की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज हो गया है और स्टोरी है कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप, लव और रिलेशनशिप की कंफ्यूजन से भरी हुई। और वीर फिल्म में विशाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कॉलेज का बैक बेंचर है, क्लास बंक करता है, पार्टीज करता है और फिर सुहाने के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन पिक्चर में एंट्री होती है अपार शक्ति खुराना के कैरेक्टर रंजीत की, जो सुहानी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। और बस फिर क्या भाई, शुरू हो जाता है इनका प्रॉपर लव ट्रायंगल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने और कास्ट में है आफिया सैयद, अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और साथ ही साथ निखिल विजय भी। और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसी दिन अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम द कंक्लूजन भी रिलीज होगी। मतलब 2 अक्टूबर को थिएटर्स में सिर्फ लव का कंफ्यूजन नहीं, बल्कि ऑडियंस के पास मूवी चूज करने का भी कंफ्यूजन होने वाला है। और इस कंफ्यूजन को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का भी। एंजॉय कीजिए ये गाना, शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। मैं हूँ आज पलक आप सभी के साथ।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: Just monarch, divine, Sunday no competition.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: महाभारत की कहानियों में अगर किसी करेक्टर की बात सबसे ज्यादा होती है तो कर्ण का नाम जरूर आता है। और अब कर्ण की कहानी बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी। जी हाँ, साउथ सिनेमा के प्रोडक्शन हाउस पेन मूवीज ने महावीर कर्ण नाम की माइथोलॉजिकल फिल्म का अनाउंसमेंट किया था और अब फिल्म के लीड एक्टर को भी रिवील कर दिया गया है। इस एपिक सागा में राघव लॉरेंस कर्ण का कैरेक्टर प्ले करेंगे और मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। फर्स्ट लुक में राघव का वॉरियर अवतार काफी पावरफुल नजर आ रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज एन एक्टर ये उनकी पहली माइथोलॉजिकल फिल्म बताई जा रही है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रमेश वर्मा और मेकर्स इसे नेक्स्ट ईयर पैन इंडिया रिलीज करने की प्लानिंग में है। राघव लॉरेंस को ऑडियंस कंचना फ्रेंचाइज और अपने एक्शन पैक्ड फिल्म्स के लिए जानती है। अब देखना होगा कि कर्ण के रूप में उनका ये नया अवतार ऑडियंस को कैसा लगता है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

तो बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्ट्रेस स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: सो आई होप आपको मेरी बातें सुन के बिल्कुल नींद नहीं आई होगी, है ना। और मेरी नींद भी उड़ चुकी है, और इसी के साथ वक्त हो चुका है आज की फिल्मी फ्लेवर को शट डाउन करने का। आज भी काफी सारी फिल्मी बातें हुई, कुछ नए अपडेट्स मिले, और रोज की तरह मेरी बकबक भी सुन ली आपने। लेकिन अब इस बकबक को पॉज देते हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना यार, आज जाऊंगी तभी तो कल फिर से आऊंगी। मैं हूं आरजे पलक, और शो चल रहा था फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर। एंजॉय कीजिए ये गाना, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: नहीं हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुणाल फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल, और जिनसे आज ना हम बहुत ही अमेजिंग डे पर बात करने वाले हैं, जो है अल्जाइमर डे। तो आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, और इस डे पर ना बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ डॉक्टर के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ है, बहुत सारे ऐसे डाउट है जो मैं आज डॉक्टर से डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज मैं ना आजकल बहुत सारी चीजें भूल रही हूँ यार, फोन मेरे हाथ में होता है, फोन ढूंढ रही होती हूँ। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए ना आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेडियो महारानी के स्टूडियो में आपका। डॉक्टर, आज हम अल्जाइमर डे के पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपसे जानने के लिए। तो पहले ये बताइए, हम सब कभी कभी चीजें रखकर भूल जाते हैं, किसी का नाम याद नहीं आता या कोई छोटी बात जो मिस हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली को कैसे समझना चाहिए कि ये नॉर्मल एजिंग है या फिर फॉरगेटफुलनेस है या फिर ये अल्जाइमर है? अगर मैं बात करूँ, ऐसे कौन से वार्निंग साइन है जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही जरूरी है हमें ये बात समझना कि आज के डेट में कॉमनली जब हम लोग बात करते हैं भूलने की बीमारी को, एंड ये भूलने के सिम्टम इतना कॉमन है आज की डेट में कि चाहे वो यूथ हो, चाहे वो इवन स्कूल के बच्चे, या इवन जो है जो एल्डरलीज पॉपुलेशन, बहुत कॉमनली हमारे पास आते हैं। एंड सबको जब वो बड़ा रूटीन है कि चैट जीपीटी पे देखा, गूगल पे देखा, तो भूलने की बीमारी देखा, तो पता चला जी उसमें दूसरे डिमेंशिया लेके आ रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हर भूलने की बीमारी डिमेंशिया नहीं होती, या हर भूलने की बीमारी खतरनाक नहीं होती। यस, ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारी अलार्मिंग साइंस क्या होते हैं, या हम कब समझें या पहचाने कि यार ये डिमेंशिया का दस्तक हो सकता है। सो उसके लिए कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें जरूर समझने चाहिए। पहली चीज, यस, भूलने का एक प्रॉब्लम कॉमन होता है डिमेंशिया के पेशेंट में, अल्जाइमर्स के पेशेंट में। अब ये भूलना कैसा भूलना होता है? ये भूलना का मतलब होता है जैसे बहुत कॉमनली आप चीज़ें रख के भूल जा रहे हो, और केवल रख के ही नहीं भूल रहे हो, बल्कि कई बार चीज़ों को आप ऐसी जगह छुपा दे रहे हो जिसको आपको फिर ध्यान भी नहीं आ रहा। और कभी कभी लोग इस तरह के भी सिम्टम्स दिखाते हैं कि वो आपने रख दिया और फिर अपने घर वालों को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मेरी चीज़ को उठा लिया या आपने मेरी चीज़ को चुरा लिया। दूसरी कॉमनली, उनको याद भी नहीं आ पा रहा है कि उन्होंने कहाँ रखा, क्योंकि नॉर्मल भूलने में कई बार क्या होता है, हम अपने दिमाग में जोर डालें तो कई बार हमें याद आ जाता है, पर डिमेंशिया पेशेंट में जब वो चीज़ें भूलने लगते हैं या चीज़ें वो रख देते हैं तो उनको नॉर्मल बहुत टाइम लगता है याद आने में, और कई बार याद भी नहीं आता। दूसरी चीज़, नॉर्मल भूलने में मतलब कभी कभी आप भूल रहे हो, ये हमारे साथ भी होता है। जैसे हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, हमने अपनी चाबी कहीं रख दी वो हम भूल गए, चश्मा कहीं रख दिया हम वो उठाना भूल गए, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कई बार एजिंग के साथ बढ़ जाती है, जैसे हम बोलते हैं उम्र के साथ ही सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बट डिमेंशिया में क्या है, जब ये बहुत रूटीनली होने लगे, बहुत फ्रिक्वेंटली हमें देखने लगे, और ये कहीं ना कहीं हमारी डेली फंक्शन को भी इफेक्ट कर रहा हो, मतलब उसकी वजह से आपके घर वालों को लगने लगे कि नहीं ये इरिटेशन बढ़ रही है इनकी वजह से, या बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा काम कर रहे हैं ये भूलने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज और डेली लेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज मतलब जैसे कुकिंग, एक फीमेल्स के लिए अपने खाना बनाना बहुत कॉमन चीज होती है कि वो खाना बना रहे हैं तो कितना नमक डालना है, चाय बना रहे हैं कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितने लोगों का खाना बना रहा है, 4 लोग का खाना बनाना है, पता चला 10 लोग को खाना बनाना है। रूटीन, जैसे एक ऑफिस वाले को क्या है, अपने अपॉइंटमेंट्स हैं उसकी, वो अपने घर से निकल रहा है ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक जा रहा है, जाना आपको आगे है, आप वहीं पर कन्फ्यूज हो जा रहे हो कि मुझे कहाँ पहुँचना है। ड्राइविंग में उसको दिक्कत होने लगी है, कई बार लोगों को एक्सीडेंट्स होने लगते हैं क्योंकि उनके जो ड्राइविंग का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। एक शॉपिंग, जैसे एक अगेन जैसे लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए, वहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे वो पैसे का हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स, जो डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ पे वो गड़बड़ी कर रहे हैं। कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉप में, वहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कितना पैसे देने हैं, कितना पैसे लेके आने हैं घर पे। ये जितने सिम्टम्स हैं ये बहुत अलार्मिंग होते हैं, तब पहचान लेना चाहिए कि हाँ ये एक डिमेंशिया का दस्तक हो सकता है, और तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए।
0: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है। तुम कहा करते थे कि सफर... This is the social song.
1: रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा, सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजेंची और आज मैं स्टूडियो में अकेली रही हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर। सर डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई पेशेंट मेमोरी लॉस लेकर आपके पास आता है तो आप डायग्नोसिस तक पहुँचने के लिए किन चीजों को एवल्यूट करते हैं? क्या स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन, मेडिसिन, विटामिन की कमी या फिर कोई और कंडीशन जो मेमोरी को इफेक्ट कर सकती है, ऐसे कौन से रूट कॉज है जिसकी वजह से पता चलता है कि अल्जाइमर है?
1: देखिए, मेमोरी लॉस जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत कॉमनली आज की डेट में बढ़ चुके हैं। यूथ में भी हम लोग कई बार मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखते हैं। यस, डेफिनेटली स्ट्रेस और स्लीप, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कॉमनली अफेक्ट करती है हमारे मेमोरी को। रीजन भी है उसका पीछे। नींद जो होती है हमारी बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होती है। हमारी कुछ स्टेजेस ऑफ स्लीप ऐसी होती है जो बहुत ही हमें जरूरी है वो हमारे स्लीप में आना, जिसको हम रैम स्लीप कहते हैं। ये ऐसे ही स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है जहाँ पे हमारी मेमोरी को प्रोसेसिंग होती है। सो सपोज करो, हम दिन भर में बहुत सी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, 10 लोगों से क्या हजारों लोगों से शायद मिल रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि हमें हर चीज याद रहे। तो कई चीजें इसमें स्टोर हो जाती है मेमोरी, कई चीजें हमें वॉश आउट हो जाती है। तो जो स्टोरेज वाली कहानी है, किसको हमें स्टोर करना है, ये सारी चीजें स्लीप में होती है, एक फेज ऑफ स्लीप में होती है। अब आज के युवाओं में या आज के जो हम लोग देख रहे हैं जनरेशन में, लोगों के स्लीप की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। और ऐसा नहीं कि वो जान के, कई बार ऐसा भी है कि लोगों की स्ट्रेस लाइफ ऐसी है, वर्किंग कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे लेट नाइट तक जग रहे हैं, स्लीपिंग ले रहे हैं प्रॉपर, ऐसे में मेमोरी प्रॉब्लम्स होने का बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। जब यही चीज़ रूटीन में आ जाए, बहुत कॉमन कल्चर हो गया है नाइट शिफ्ट करना, डे टाइम पे रहना, डे टाइम पे सोना, ऐसे में मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ बहुत लंबे टाइम तक नाइट शिफ्ट करोगे, डे टाइम पे रहोगे, तो हमारी जो इनर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जो हमारी फेजेस ऑफ स्लीप रात की होती है वो दिन में नहीं पूरी हो सकती। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोगों में आगे जाके मेमोरी की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कई लोगों को कहता हूँ कि नाइट शिफ्ट्स ऐसा नहीं कि एकदम आप बंद कर दो, बट उस पर कंट्रोल चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रूटीन बना लो। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारी स्लीप पे कंट्रोल रखना। एंड सेकेंडली, यस, स्ट्रेस अगेन इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिकॉज हम अटेंशन पावर हमारी कम हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं चीज़ों को। पॉलीफार्मेसी मतलब दवाइयाँ, बहुत इमदा जवाब आपके क्वेश्चन कि दवाइयों की वजह से भी होता है। यस, आज की डेट में बहुत कॉमनली हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत सी दवाइयाँ खा रहे हैं, मिक्सचर और दवाइयाँ खा रहे हैं, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और हमारी मेमोरी को भी डाउन करती हैं। तो ऐसे में कभी भी आपको मेमोरी की प्रॉब्लम हो तो आप जब भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्लीप कैसी है, आपकी स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी दवाइयाँ क्या क्या चल रही हैं, आपका हेडेक्स अगेन सिर दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई में हमें देखा है, ये साइंस कहती है, हमारी स्टडीज कहती है, जब एक सिर दर्द बहुत लंबे टाइम तक चले या सिर दर्द कंट्रोल ना रहे तो लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे में जरूर न्यूरोलॉजिस्ट से जब भी मिले तो हमें पता होनी चाहिए ताकि न्यूरोलॉजिस्ट समझ सके कि हाँ कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स दिख रही है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: गया, खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: डॉक्टर कॉलिंग।
4: हाय, आई एम डॉक्टर नितीश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। वार्म अप एटलीस्ट 5 to 10 minutes मिनिमम होना ही चाहिए रनिंग से पहले। उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन कंसिडरिंग डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है। हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है। जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें।

अटल पट्टी को जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, बत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई तो करे रिस्टार्ट।

0: start.
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरशी एंड शे, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर। डॉक्टर, अगर बात करें डायग्नोसिस की, अर्ली डायग्नोसिस से एक्चुअल में क्या बदलता है? बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना कई फैमिलीज की, तो कई फैमिलीज डायग्नोसिस से इसलिए बचती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्जाइमर का नाम जानने से क्या फायदा, जब डिसीज को लेकर ट्रीटमेंट लिमिटेड है। आप उन फैमिलीज को क्या समझाना चाहेंगे? अर्ली डायग्नोसिस होने से पेशेंट के ट्रीटमेंट और सिम्टम को मैनेज करना फ्यूचर में कितना इजी हो सकता है और कितना डिफरेंस पड़ता है इन सब का एक पेशेंट के ऊपर।
2: बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली डायग्नोसिस। आज इस साल तो हमारा स्लोगन ही यह है कि अर्ली वी डायग्नोस बेटर द आउटकम, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो साइंस है बहुत इवॉल्व कर चुकी है। आज डिमेंशिया, अल्जाइमर्स में हमारे कुछ ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिसको हम देने से हमारी डिजीज का प्रोग्रेशन, मतलब जो उसका बढ़ने का जो उसका रास्ता है, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कभी भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें तो हम ये नज़रअंदाज ना करें कि ये उम्र के चलते हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। तुरंत इसका जांच कराएं। जब भी हमारे पास मरीज आते हैं मेमोरी की प्रॉब्लम लेके, लैंग्वेज की प्रॉब्लम लेके, कि चीज़ें वो भूल रहे हैं, चीज़ें शब्द नहीं याद आ पा रही हैं, या चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई है, तो हम लोग कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव असेसमेंट। हम लोग कुछ कॉग्निटिव असेसमेंट डिटेल में करते हैं। ब्रेन के अलग अलग फंक्शन को हम लोग उस असेसमेंट में देखते हैं, लैंग्वेज, मेमोरी, अटेंशन, जो हमारा जजमेंट है, विजुअल स्पेशल है, ये अलग अलग हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग कॉग्निटिव असेसमेंट करते हैं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे आपने बताया विटामिन के डेफिशिएंसीज, कई बार लिपिड की गड़बड़ी की वजह से, और कुछ कुछ पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से, तो ये सारे हम लोग चीज़ें स्टडी करते हैं। कुछ स्पेशलाइज टेस्ट, जैसे स्पेशल टेस्ट में EEG, MRI ब्रेन, आज के डेट में वी डू ऑल्सो फंक्शनल MRI। फंक्शनल MRI मतलब ऐसा MRI जब हमें ब्रेन के एग्जैक्ट फंक्शंस को बताते, वो पेट स्कैन कहते हैं उसको, वो भी हम करके देखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जांच जो हम लोग अल्जाइमर्स के लिए कहते हैं, आज के डेट में बायोमार्कर देखते हैं। बायोमार्कर मतलब कुछ ऐसे स्पेशलाइज टेस्ट जिसको हम देख के बता सकते हैं कि वाकई में अल्जाइमर्स है कि नहीं है।
1: ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजी अंशली और आज मैं रेडियो महारानी पर बात कर रही हूँ वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में। सो डॉक्टर, अगर कोई पर्सन अपनी ब्रेन हेल्थ को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करना चाहता है तो आज से किन हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए, और साथ ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एक्सरसाइज, इवन स्लीप, हियरिंग, सोशल इंटरेक्शन, मेंटल स्टिमुलेशन और डाइट का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, और अगर घर में अल्जाइमर का पेशेंट है तो केयर गिवर को पेशेंट की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हुए उनकी सेफ्टी और अपनी खुद की वेलबींग कैसे मैनेज करनी चाहिए।
1: देखिए, सबसे जरूरी है हमें ये जानना कि जैसे हम अपने हेल्थ को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें मेंटली फिट बहुत जरूरी रहना। उसके लिए हमें पता होना चाहिए आज से किस किस हैबिट्स पे हम काम करें। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो बताए गए हैं, जिसको हम अगर हम कंट्रोल करें तो हमें आगे जाके मेमोरी की प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर लर्निंग। हम कभी भी अपनी लर्निंग हमें बंद नहीं करनी चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। आज इतने सालों के बाद भी मेरी हमेशा हैबिट रही है कि मैं हमेशा हर दिन उठ के कुछ ना कुछ पढ़ूँ और कुछ टाइम दूँ। तो मुझे लगता है ये सबको फॉलो करना चाहिए। कभी भी, चाहे हम कितनी भी उम्र हो जाए, हमारी लर्निंग कर्व कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम क्या नया स्किल सीखें, हम कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करें, तो वो लर्निंग कर्व हमेशा आपका कंटिन्यू पैरेलली चलना चाहिए। बहुत अलग रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंट्रोल रखना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल को तो खासकर हमें कोशिश करनी है कट डाउन करें, बिकॉज स्टडीज कहती हैं आगे जाके जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल के सेवन करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें डिमेंशिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्लीप, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्लीप इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। तो कोशिश करना चाहिए हमारी स्लीप बहुत अच्छी रहे, और इसके साथ साथ स्ट्रेस और एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिश करें हमेशा अपने को फिजिकली एक्टिव रखें, सोशली इंगेज रहें, सोशली कनेक्ट करें, क्योंकि आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम एक एक एक रूम के अंदर से मटके रह गए। हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम फोन पे हैं, लैपटॉप के आगे हैं, और हमारा कहीं ना कहीं वो एक सोशली कनेक्ट धीरे धीरे कम हो गया है। तो ऐसे बीमारियों से बचने के लिए हमेशा कोशिश करें कि सोशली आप जितना कनेक्ट कर सकें, लोगों से मिलें, परिवार वालों से, दोस्तों से। तो जितना ज़्यादा आप सोशली अपने आप को एंगेज रखोगे, उतनी बहुत बहुत बहुत कम चांसेस हैं आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम होने के।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। और यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे अल्जाइमर है, या फिर आपके आसपास कोई आपका कलीग या फिर कोई आपका नेबर अगर इस बीमारी से गुजर रहा है, तो उन्हें केयर दीजिए, उन्हें एक्स्ट्रा प्यार दीजिए और उनके साथ डिग्निटी के साथ रहिए। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।
2: केयर दीजिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: मेरे कुछ दोस्त अभी से ही पटाखे लेने जा चुके हैं। आपके भी दोस्त गए हैं क्या? और फिर उसके बाद ना वहाँ से जाके वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं कि भाई ये देख इतने सस्ते पटाखे मिल रहे हैं।

0: और एक दोस्तों लेकर आया, उसके सारे के सारे पटाखे फुस्सी निकल गए।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: यू नो ना दिस वर्ड फुस्सी, फुस्सी कहते ना, मतलब जो बजते नहीं है, जो आवाज नहीं करते, जिसको जलाते हैं फिर वो फटते नहीं है, वो पटाखे होते हैं फुस्सी बम। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। हफ्ते का वो दिन जब हम लोग बैठे होते हैं इंतजार में कि कब आएगा वीकेंड, कब आएगा वीकेंड, और वीकेंड का इंतजार करते करते तो सुबह से शाम हो जाती है, और अब शाम भी हो चुकी है। 5:06 मेरे स्टूडियो क्लॉक में, एंड मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है HR 896। बहुत सारी बातें आज मेरे पास करने के लिए। कल आपके घर के पास पास भी बिजली गुल हुई थी क्या? रात को मैं यहाँ से घर पहुँचा एंड मम्मी ने मुझे बताया कि देखो 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही। देखो ऑफिस में तो यार बिजली का सब कुछ बंदोबस्त होता है, जनरेटर चल जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट घर पे बिजली नहीं आ रही थी। एंड फिर उसके बाद पता लगा कि फरीदाबाद में बहुत सारी जगहों पर बिजली नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ था, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट हो गया था, और इसके बारे में भी करेंगे बात। इसके अलावा आजकल आपके दोस्त भी बीमार हो रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे कम से कम 4 नोन में लोग हैं जिनसे अभी तक मैं पूछ चुका हूँ, और वो चारों के चारों बीमार पड़े हैं, और सबका यही कहना है कि इतना ज़्यादा दर्द होता है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मन कर रहा है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वायरल है। और इसके अलावा अगर फरीदाबाद में कुछ भी चीज़ है जो आपको लगता है कि पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए, तो वो चीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फरीदाबाद की सारी अपडेट्स आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 पर। और मैं आ चुका हूँ, तो अगले 3 घंटों के लिए नहीं, अगले 4 घंटों के लिए खूब सारी मस्ती होने वाली है, बातें होने वाली है, फिल्मों के बारे में करेंगे बात, एशियन मेडल्स, एशियन गेम्स में कितने मेडल्स जीत लिए इसके बारे में करेंगे बात। इसके अलावा जो आप बिना सोचे समझे पेन किलर खा लेते हो, एंटीबायोटिक खा लेते हो, मत करो मेरे दोस्त, मत करो ऐसा, क्यों नहीं करना ऐसा, सब कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए रेडियो महारानी सुनते जाइए। मैं हूं गौरव आपके साथ, और अभी आप सभी के लिए ये गाना।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कल के दिन तो इन्वर्टर भी वीआईपी बन गया था, क्योंकि सब लोग सोच समझ के कल इन्वर्टर को चला रहे थे, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इतनी लंबी देर तक लाइट गई थी और फिर याद आया कि घर में तो इन्वर्टर भी लगा हुआ है। मेरे दोस्त रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर स्वागत है आप सभी का। एंड कल जब बहुत देर तक लाइट नहीं आई ना, उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा माहौल बहुत सालों पहले देखने को मिलता था। अभी बहुत सालों से तो लाइट नहीं जा रही थी, टचवुड, और इसकी वजह भी सामने आई। और फिर मुझे ऐसा लगा था पहले सिर्फ मेरे घर के आसपास बिजली गई है। मैं ऑफिस से घर गया रात को 9 बजे और मम्मी से पूछा, मम्मी लाइट कब से नहीं आ रही है? तो उन्होंने बताया शाम को 5-6 बजे से नहीं आ रही है, या फिर उससे पहले से भी नहीं आ रही होगी। तो फिर बाद में मैंने और थोड़ा सोचा इसके बारे में। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फरीदाबाद न्यूज़ पे देखा जाए, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है उस पे देखा जाए। तब मुझे पता चला कि एनटीपीसी समयपुर में 220 किलोवाट का जो सर्किट है वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी। बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर उसके बाद जब कमेंट सेक्शन में गया तो सबका यही रिप्लाई था कि अच्छा तभी लाइट नहीं आ रही, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस हो जाएगा तो फिर लाइट आ ही जाएगी। और हो ना हो अराउंड 10:30 या फिर 11 बजे के आसपास लाइट आ गई थी, और फिर उसके बाद ठीक ठाक हो गया था सब कुछ, रात भर लाइट रही। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि गर्मियों के दिनों में लाइट ना ही जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जस्ट इमेजिन ये जून का महीना होता और ऐसे ही जैसे कल लाइट गई थी वैसे लाइट चली जाती तो क्या हाल होता पूरे फरीदाबाद का। समझ सकते हो आप लोग कि अभी तो फिलहाल गर्मी है नहीं, बट हाँ जब इतनी गर्मी जून जुलाई वाली होती तब तो दिक्कत हो जाती ना। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग इन सब चीज़ों को मन में आने ही नहीं देंगे कि लाइट जानी नहीं है, ये सोचेंगे बस। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाएंगे आप सभी के लिए। ये गाना मैं हूं गौरव आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो HR 89.6।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज,
1: तो एच आर ए 96 पर आ जाता है रेडियो का गौरव,
0: आरजे गौरव।
2: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
3: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस गाने की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पागल पागल हैं थोड़े बादल बादल हैं, दोनों खुल के भीगे आ जरा, खुल के अगर भीग गए होते ना आप लोग अभी कुछ टाइम पहले जो बारिश हुई थी, लास्ट वाली जो बारिश हुई थी, दो चार छींटे पड़े थे भले ही, बीमार पड़ जाते अगर नहा लिए होते उस टाइम। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? ये सवाल पूछना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बीमार पड़े हुए हैं, और उन सब में से 3 लोगों का सेम कहना है कि भाई बॉडी पेन इतना ज़्यादा, इतना सीवियर है कि मन कर रहा है कि कोई बस हॉस्पिटल में एडमिट कर दो या फिर कोई मालिश कर दो अच्छे से पैरों की, और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ वाला पेन हो रहा है, और फीवर 100 से 102 से 103 तक पहुँच जा रहा है, और ये इसके साथ साथ कुछ लोगों को कोल्ड भी है तो कुछ को खांसी भी है। अब समझ नहीं आ रहा, देखो स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाओ आप लोग, मैं तो पहले ये बोलूँगा डॉक्टर के पास जाओ, दूसरी चीज़ पॉसिबिलिटीज सोच लेते हैं, डेंगू भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, और हो सकता है एक नॉर्मल सा वायरल सा फीवर हो, और मैं तो यही प्रे करूँगा कि अगर कोई भी इंसान बीमार है इस टाइम उसको एक नॉर्मल सा वायरल फीवर ही हो ताकि वो जल्दी से इन सब चीज़ों से रिकवर कर सके। अब करते हैं बात इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। पहली तो बात, फुल स्लीव के कपड़े पहनना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं पहनता फुल स्लीव के कपड़े, खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी ख्याल, अपनी तबीयत का ख्याल रखना हमें पड़ेगा, और इसी के साथ साथ मौसम बदल रहा है मेरे दोस्त, सुबह और शाम को थोड़ा बहुत ठंडक होनी शुरू हो गई है, तो ठंडा पानी पीना अब हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, और इसके साथ साथ मच्छरों से बचाव के लिए घर में जो मस्कीटो रिपेलेंट होते हैं ना, उन सब का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसी बीमारी दिक्कत दे जाएगी थोड़ी सी, तो चिकनगुनिया डेंगू ये सब फैल रहा है बहुत तेज़ी से। इसके अलावा टाइफाइड भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है, ये अभी रिसेंट में मेरे नोन में किसी को हुआ था, फिर मैंने दूसरे से पूछा उसको भी हुआ था, फिर वो जहाँ पर एडमिट था उसमें 3-4 लोगों को हुआ हुआ था, तो टाइफाइड भी फैल रहा है, तो प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ये मौसम है कुछ भी हो सकता है इस मौसम में, मगर हम लोग तो गाना गाएंगे, मतलब गाना चलाएंगे आप लोगों के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को, मैं हूं गौरव आपके साथ।

0: दीवार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि बीमारी बढ़ रही है, लोग सब लोग बीमार हो रहे हैं, और उसके अलावा मतलब लोग ना अपने आप को डॉक्टर भी समझना शुरू कर चुके हैं, हर जगह अपनी चलाते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब, फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि तबीयत खराब हो रही है लोगों की और लोग अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर चुके हैं, खुद से ही कुछ भी दवाई उठा के ले आते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत कीजिए जनाब, मत कीजिए। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सरकार ने भी बोल दिया है, देखो पेन किलर और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल आप लोग कम से कम कर दीजिए। और ऐसा होता है बिना डॉक्टर की सलाह के हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, तो एक सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें बोला गया है कि पेन किलर और एंटीबायोटिक्स लेने से दिक्कतें हो सकती है। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, किडनी में नुकसान हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को उजागर किया गया, मतलब इस पूरे जो सर्कुलर है उसमें। और इसके साथ साथ काफ़ी बार ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट के पास जाके हम लोग उनसे बोलते भैया आप ही दवाई दे दो बना के, वो भी खुराक बना के दे देते दो दो। अब इसमें जो नया सर्कुलर जारी हुआ है उसमें बोला गया है फार्मासिस्ट और रिटेलर्स को कि शेड्यूल एच और शेड्यूल एच वन की दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना बेचें और ना ही खुद से बनाकर दे दें। अब शेड्यूल एच और शेड्यूल एच वन में कौन कौन सी दवाई आती है, इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आप लोग इसके बारे में सर्च ज़रूर कीजिएगा। और मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप लोगों को दवाई नहीं लेनी है, नहीं लेनी है मतलब नहीं लेनी है। हाँ आप लोग काढ़ा ट्राई कर सकते हैं घर में बना हुआ, और ऐसी चीज़ें ट्राई करना जिससे नुकसान ना हो, बॉडी को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचे। जैसे सर्दियों में होता ना चाय पी लेते हैं हम लोग, बस वो चीज़ करनी है आपको, उससे ज़्यादा कुछ भी ट्राई नहीं करना है। और दवा लिखने से पहले डॉक्टर्स भी, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जितने भी पेशेंट्स को दवाई लिख रहे हैं, उनको एक सही जानकारी दें कि आपकी ये दवाई है, कितने दिन आपको खानी है, और इसके बाद ऐसा नहीं कि दवाई बच गई तो फैमिली में कोई बीमार हो उसको खिला दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि गौरव है आप सभी के साथ, बातें और गाने ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिस्से

जितने भी लोग फरीदाबाद में पैदा हुए हैं और फरीदाबाद में रह रहे हैं या फिर कहीं और पैदा हुए और अब फरीदाबाद में रह रहे हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत ही अच्छी जगह पे रह रहे हैं। बहुत सस्ता है फरीदाबाद। आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। अब जो मैंने बात बोली इससे हो सकता है काफी सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं गलत बोल रहा है। गलत नहीं बोल रहा, एक्चुअली मैं एक गुड़गांव में कपल रहता है और उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो डाली है और उसमें बताया कि हमारा अगस्त का खर्चा कितना ज़्यादा है, यहाँ पर करीब करीब 1,20,000 रुपये भी कम पड़ जाते हैं। कैसे बताया उन्होंने बताओ? एक्चुअली उनके पास है 3 BHK और उसमें किराया और मेंटेनेंस दे रहे हैं वो 36,000 रुपये। फरीदाबाद में अगर आप एक 3 BHK में रह रहे हैं तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा? चलिए मान लेते हैं अपार्टमेंट्स में अगर आप रह रहे हैं तो इसमें करीब करीब आपको विद मेंटेनेंस 32,000 मिल जाएगा इन फरीदाबाद। और ये जगह जगह पे डिपेंड करता है, सेक्टर 21 साइड थोड़ा महंगा हो सकता है और नहर पार थोड़ा सस्ता हो सकता है। अब इसके अलावा गुड़गांव में इस रहने वाले इस कपल का कहना है 36,000 रुपये तो किराया और मेंटेनेंस हो गया, हाउस हेल्प के लिए 6,000 रुपये, राशन 25,000 रुपये, बाहर खाने का 15,000 रुपये और ट्रांसपोर्ट पर 5,000 रुपये और इसके अलावा मिसलेनियस खर्चा भी तो होता ही है। तो कुल मिलाकर 1,20,000 रुपये खर्च कर रहा है ये कपल। और कपल ये भी बता रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट

होती है और जो पर्सनल खर्चे होते हैं ना वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। मतलब एक महीने में 1,20,000 रुपये भी इनके लिए कम पड़ रहे हैं गुड़गांव जैसे शहर में। अब इमेजिन करो फरीदाबाद में आप सिमिलर कमा रहे हो और फरीदाबाद में आप एक किराए के घर पर रह रहे हो और आप सिर्फ एक कपल हो, सिर्फ दो लोग हो, क्या आपको भी 3 BHK चाहिए होगा? क्या आपका भी खर्चा 1,00,000 रुपये से ऊपर आएगा? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जवाब भी दीजिएगा। कैसे? नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी 99.6 पर आप सभी के लिए गाना सुनिए। इस गाने को मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी ऐसा देखा है कि आपने सपने में बर्थडे पार्टी मनाई है किसी का? तो इसका क्या मतलब हो सकता है? वक्त हो चुका है सपनों को डिकोड करने का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। अगर आप सपने में किसी को भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हो तो इसका सिंपल सा एक पॉजिटिव मतलब है, और उसका मतलब ये है कि कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ये सपना इशारा करता है कि आपकी लाइफ में कोई नया फेज शुरू हो सकता है, जैसे कोई नई जॉब, नया रिश्ता या फिर कोई नया बिजनेस। और इसका सिंपल सा मतलब ये भी है कि खुशियाँ बढ़ने वाली है, सक्सेस आने वाली है और कोई अच्छी खबर आपका इंतज़ार कर रही है। और हो सकता है आपकी कोई पुरानी विश हो वो पूरी होने वाली हो, क्योंकि सपने में अगर आपके काटते हैं या फिर कैंडल्स बुझाते हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि आपकी कोई पुरानी विश पूरी होने वाली है। और दोस्तों और फैमिली के साथ अगर आप सपने में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप आने वाले समय में लोगों के साथ इन रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत कर लोगे। अब देखो, जितने भी मैं सपनों को डिकोड करता हूँ ना, तो इसके मतलब यही होता है कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा एक मतलब होता है। खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब एक बहुत ही अच्छा किस्मत चमकाने वाला साइन आपको मिल रहा है। हो सकता है लॉन्ग लाइफ, हो सकता है रिस्पेक्ट और आपको सम्मान, वो दोनों मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, परिवार में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर दोस्ती में ही क्यों ना हो। और हो सकता है आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ भी होने वाली है, मतलब मेंटल और इमोशनल लेवल पर आप ग्रो करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सपने बताते हैं, तो ऐसे ही रोज़ शाम को सपनों को डिकोड करते हैं और आज भी डिकोड किया ये सपना। और अभी फ़िलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, मैं हूँ गौरव आपके साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM एंड शो चल रहा है HR 89.6।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: इंडिया में हर साल बहुत सारी मूवीज बनती है और उनमें से काफी सारी मूवीज आती है और चली जाती है और पता ही नहीं चलता।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? आपको पता है ना, अभी 2 तारीख को कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है? बस आज से 9 दिन बाद एक मूवी ऐसी आने वाली है जिसका नाम होता है दृश्यम पार्ट 3 द कंक्लूजन। और इसका इंतजार मैं तो कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना उस मूवी के बारे में बात की जाए जो बनी तो मात्र 2 करोड़ में थी, 350 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और इस फिल्म का नाम है हनुमान अंश। अब मैं इस मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले बनी, फिर उसके बाद उतर गई, फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो देखाते हैं, 1-2 स्क्रीन्स में बची थी, फिर उसके बाद लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई ये फिल्म कि सब लोग जाके देखने लगे, और अब माहौल ऐसा है कि इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। चलिए बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स की। अभी सितंबर में मूवी आई थी मिर्ज़ापुर द मूवी, 217 करोड़ का भारत का कलेक्शन है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इसका 315 करोड़। सुपर डुपर हिट गई है ये। और इसके अलावा बैंग बैंग याद है आप लोगों को, साल 2014 में। मैं इस मूवी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इंटरेस्टिंग लगी थी, और ये थी ऋतिक रोशन की। इसने भी वर्ल्ड वाइड कलेक्ट किए थे 332 करोड़। और यहीं पर बात करें आने वाली फिल्म दृश्यम 3 के पहले पार्ट्स की, यानी कि दृश्यम 1 2015 में आई थी, उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्ट किए थे 110 करोड़। वहीं पर अगर मैं बात करूं दृश्यम पार्ट 2 की, तो इसने कमाए थे 345 करोड़ रुपए। और अब बात कर रहा हूं मैं हनुमान अंश की, जो कि इन चारों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और बजट में काफ़ी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मैं तो कहूँगा जितनी सैलरी, जितनी फीस 2014 में बैंग बैंग के लिए ऋतिक रोशन ने ली थी ना, उससे भी कम बजट में ये फिल्म पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। और अभी ये हर जगह चर्चा में है और मुझे लगता है इसके अगले पार्ट में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा। बाबा जी की लाइफ के ऊपर मूवी है तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, बातें और गाने ही चलते रहेंगे। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना आदित्य रिखाड़ी की आवाज़ में रेडियो महारानी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपको मालूम है एशियन गेम्स चल रहे हैं, और क्या आपको मालूम है टोटल 11 मेडल्स अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 5 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है और 1 गोल्ड है, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने जीता। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और इस बार एक चीज हुई है, उसे कहते हैं वुमेन्स ने हर जगह झंडा गाड़ दिया इंडिया का। मैं बात कर रहा हूँ वुमेन्स क्रिकेट टीम की, जिन्होंने वुमेन्स T20 टूर्नामेंट जीत लिया है, गोल्ड मेडल लेकर आ गई है, जीता है अगेंस्ट श्रीलंका और बहुत ही अच्छी बैटिंग का नज़ारा दिखाया। और यहीं पे मैं बात करूँगा, ये आईची नागोया में हो रहा है 2026 का एशियन गेम्स, और इसके बाद बात करेंगे शूटिंग की। तो शूटिंग में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया है, और उसमें मेंस ने कमाल दिखाया, मेंस 10 मीटर एयर राइफल, और फिर उसके बाद मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम में भी एक और सिल्वर आया है, और इसके अलावा वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल में भी एक सिल्वर आया है, और वहीं पर वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम में भी सिल्वर आया। मतलब ये तो 4 सिल्वर हो गए, और इसके अलावा एक और सिल्वर आया, वो वुमेंस ने 49 केजी में कमाया है। और इसके अलावा ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में वुमेंस ट्रेडिशनल 60 केजी में सुचिका तड़ियाल ने ब्रॉन्ज जीता है, एशियाड MMA मेडल। और इसके अलावा सॉफ्ट टेनिस में भी एक ब्रॉन्ज आया मेंस सिंगल्स में, और बैडमिंटन में मेंस टीम्स ने एक और ब्रॉन्ज टीम इंडिया को जिता दिया। तो टोटल मैं फिर से बता देता हूं आप सभी को कि टोटल 11 मेडल्स आ चुके हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बट अभी भी मेडल्स उतने आ नहीं पा रहे। 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड, उसके साथ साथ हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। और जहां मैंने बात की विमेंस की, तो विमेंस की टीम भी ब्रॉन्ज लेकर आई है, जिनमें नाम है राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान और परिणाश धालीवाल। तो ये बहुत ही अच्छा एक अभी तक नंबर है, बट मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, मैं हूँ गौरव।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: सारी

0: I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. Person to person.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो और पड़ोस में एक इंसान बैठा है, आपके पड़ोस मीन्स आपके जस्ट साइड में एक इंसान बैठा है, वो कॉन्स्टेंटली बार बार आपके फोन में देख रहा है। आप फोन में किसी को मैसेज कर रहे हो या फिर आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो आपके सिर्फ और सिर्फ फोन में झांके जा रहा है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई भी इंसान, अननोन इंसान हमारे फोन में झांके, अरे नोन इंसान भी झांक देना तब भी गुस्सा आता है। और यहाँ पर तो दिल्ली मेट्रो में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोन के अंदर घुस घुस के देखते हैं कि क्या देख रहा है, हम भी तो देखें। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम लोग प्राइवेसी वाला टेम्पर लगवा लेते हैं, स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं। तो अब सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और उन्होंने बोला है, देखो ऐसा है, मोबाइल फोन के स्क्रीन गार्ड के लिए अब BIS मार्क होना कंपलसरी हो गया, अनिवार्य मैंडेटरी हो गया है, और ये 1 अप्रैल 2027 से होना शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2027 से स्क्रीन गार्ड को ISI मार्क के तहत, IS 193 ऐसे कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, जिसमें ग्लास की एक मोटाई भी मेजर की जाएगी, मजबूती भी मैटर की जाएगी और मेजर की जाएगी, माफ़ कीजिए, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसका जो शेप है, और उसी के साथ साथ उसमें एंटी शैटर वाली टेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करा जाएगा ताकि आसानी से ये टेम्पर्ड ग्लास जो है वो ना टूटे, और इसके अलावा प्राइवेसी भी इसमें हो ताकि कोई भी आम इंसान जब मोबाइल चला रहा हो तो दूसरा इंसान उसके फ़ोन के अंदर झांके ना देख सके। तो अभी तक तो बड़ी ही ऐसी मार्केट बनी हुई थी जो इधर उधर फैली हुई थी, बट अब इसको बोला गया कि हाँ मेक इन इंडिया के तहत आप इसको इंडिया में बनाना शुरू कीजिए, और 7 महीने का पूरा टाइम दिया गया है कंपनीज को ताकि वो लैब टेस्टिंग और फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन पूरा कर सके और 1 अप्रैल 2027 से नए टाइप के स्क्रीन गार्ड्स मार्केट में उतार सके ताकि हम सब थोड़ा सा प्राइवेट रह सकें, है कि नहीं। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना चला रहा हूँ सारे दिल टूटे आशिकों के लिए, इक्का बादशाह और डीनो जेम्स की आवाज़ में रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, तो H-R-A-96 पर आ जाता है रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आप लोगों ने भी स्मॉगी डेज देखे? क्या आप लोगों ने भी स्मॉगी मॉर्निंग देखी आज? क्योंकि मैंने तो देखी। जाना समझो ना हम रेडियो का गौरव आरजे गौरव समझो ना और विशेस विशेस विशेस विशेस मतलब दो गानों का मिक्स मैशअप था ये। और इसी गाने के साथ स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अब मैं बात कर रहा था ये स्मॉगी डेज की। ऐसा ही हो रहा है अब मौसम, अब ऐसा ही रहेगा आने वाले कुछ दिन, क्या अब कुछ महीने ऐसा ही रहेगा और पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा और हो सकता है शनिवार को आपको बारिश भी दे जाएगा। वैसे चांसेस ज़्यादा नहीं है, 20-30% चांसेस है, बट वो चांसेस भी तो चांसेस में ही काउंट होते हैं ना, तो हम लोग उसका वेट करेंगे। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 से आज मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको जो ये पोल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर जिसे PM 2.5 कहते हैं, वो पहुंच चुका है 120 के आसपास। बोला तो जाता है इसे मॉडरेट एयर क्वालिटी है, बट मैं तो ये बोलूँगा गुड रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और मई में गुड क्वालिटी के अंडर आई थी हवा, बस उसके बाद से हवा तो दूषित होती चली गई क्योंकि आसमान में ना तो हवा है ना ही बादल है। आज दिन में एक दो बादल तो आए थे, फिर उसके बाद मुझे लगा ये स्मॉग ज़्यादा है बादल कम है क्योंकि धूप थी, बट वो वाली गर्मी नहीं थी जो अभी तक अगस्त में फील हो रही थी या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में फील हो रही थी। तो मौसम ऐसे ही चेंज होता जाएगा और अब मिनिमम टेम्परेचर कल 24 डिग्री पहुंचने वाला है और मैक्सिमम 34 डिग्री रहेगा कल। और इसी के साथ साथ कूलिंग इज एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 3 डेज, ऐसा गूगल पाजी कह रहे हैं, तो गूगल पाजी की भी मान लेते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाते हैं। आप सभी के लिए ये गाना रीनो जेम्स की आवाज़ में, थैंक्स अ लॉट।

सता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जाने कमलाल ही नहीं है। और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बता दूं कि हमारे फरीदाबाद में एक बहुत ही प्यारी सी झील हुआ करती थी जिसे कहते हैं भड़कल झील। पानी भी भर गया इसमें, मगर एक दिक्कत आ गई सामने। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। यहाँ पर वाटर हियासिंथ, जिसको हिंदी में कहते हैं जलकुंभी, ये बढ़ गई है। इसकी वजह से दिक्कत आ गई है और पानी भी बेहद ख़राब गुणवत्ता का आ रहा है। और मैंने आप सभी को बताया ना, अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ से जा रहा था तो जो सीवेज ट्रीटमेंट का पानी ट्रीट होकर आ रहा है, लोग उस पानी से कपड़े धोने में लगे हुए हैं। कोई उनको जाके बताया कि ये पानी साफ नहीं है, ये स्किन को ख़राब कर सकता है। आप सभी को बता दूँ, जितने भी भड़कल झील का एरिया है ना, वहाँ पर कुछ होशियारों ने क्या किया है, आई डोंट नो क्या किया है उन्होंने, बट इधर मछलियाँ आ गई है और वो कांटा लेकर बैठे रहते हैं, वो लोग मछली पकड़ रहे हैं वहाँ पर। एंड मैंने देखा सच में एक हाथ से भी ज़्यादा बड़ी मछलियाँ वो पकड़ रहे थे वहाँ पर। पता नहीं मछलियाँ कैसे आई, आई डोंट नो दैट, बट वहाँ पर मछलियाँ आ गई। और उसके अलावा जलकुंभी और गंदगी भी बढ़ गई है। जैसा कि मैं कल परसों भी बात कर रहा था कि लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, ऊपर से प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक दे रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है वहीं फेंक दे रहा है, नहीं करना चाहिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और बता दूं आपको, 100 करोड़ खर्च करके झील को भरने के बावजूद पूरा झील अभी जलकुंभी से फैला हुआ है। और ये जो वाटर हियासिंथ कहते हैं इसे, हाइसिंथ हियासिंथ जो भी कहते हैं इसे, जलकुंभी हिंदी में अगर मैं बोलूं, तो इसको ना हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, बट अगर छोटे एरिया में हो ना तभी अच्छी लगती है। और ये अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत तेज़ स्पीड से करती है। और इसका जो रिलेशन है ना, वो अमेरिका से है। अमेरिका से कोई एक अंग्रेज़ लेकर आ गए थे, उसके बाद ये चीज़ तो बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। तो अब देखते हैं कैसे इसको हटाया जाएगा और जल्दी से इस पर बोटिंग भी शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। और इसका उद्घाटन आई डोंट नो कब होने वाला है, बट हाँ, काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और लोगों ने अभी से ही इस पर जाना शुरू कर दिया है। तो अगर आप अभी तक भड़कल झील घूम के नहीं आए हैं तो ज़रूर जाइएगा। वैसे अभी तो टाइम नहीं है, अभी अंधेरा हो गया, बट हाँ, कल जा सकते हैं आप लोग। जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 सुनते जाइए। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: क्या आप लोग भी रनिंग के शौकीन हैं? क्या आप लोगों ने भी जॉगिंग करी है कभी? क्या आप लोग भी मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? जी हाँ, राइट प्रोनाउंसिएशन इज मैराथन, नॉट मैराथन।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, तो H-R-A-96 पर आ जाता है
2: रेडियो का गौरव,
1: आरजे गौरव।
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। एनर्जी अभी भी मेरे अंदर फुल है, देखो 8 बजने वाले हैं और एनर्जी का मतलब डिप तो होती नहीं है। अब सोच रहे हो कि ब्लैक कॉफ़ी पी ली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है मैंने। मैं अभी एंजॉय कर रहा था गाने और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जहाँ भी मैंने बात करी, क्या क्या आपको दौड़ने का शौक़ है, क्या आपको भागने का शौक़ है? अगर हाँ, तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फरीदाबाद हाफ मैराथन .in पर, marathon.in पर जाइए, रजिस्टर कीजिए। 5 किलोमीटर इज फ्री, 10 किलोमीटर है, फिर उसके बाद 21.1 किलोमीटर है। तो अभी तक 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है एंड इट इज़ रन फॉर अ कॉज, ड्रग फ्री हरियाणा। जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। और जितने भी बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10,00,000 रुपए तक के इसमें प्राइजेस हैं, 3 कैटेगरीज है, 45 से 60 और 60 से अबव। तो आप लोग जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कीजिए और उस कैटेगरी के लिए प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे, यानी कि 27 तारीख को ये मैराथन होने जा रही है फरीदाबाद में। तो हम भी उधर आएंगे, वी आर द ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स रेडियो महारानी। तो इसी के साथ साथ रेडियो महारानी भी आप लोग सुनते जाइए, गाने और बातें चलती रहेंगी। एंड मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कुछ टिप्स हैं वो मैं दूंगा मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन। दौड़ेगा फरीदाबाद।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं बता गया तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम

इस गाने की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पागल पागल हैं थोड़े बादल बादल हैं, दोनों खुल के भीगे आ जरा, खुल के अगर भीग गए होते ना आप लोग अभी कुछ टाइम पहले जो बारिश हुई थी, लास्ट वाली जो बारिश हुई थी, दो चार छींटे पड़े थे भले ही, बीमार पड़ जाते अगर नहा लिए होते उस टाइम। रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ, कैसे हैं आप सब? ये सवाल पूछना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बीमार पड़े हुए हैं, और उन सब में से 3 लोगों का सेम कहना है कि भाई बॉडी पेन इतना ज़्यादा इतना सीवियर है कि मन कर रहा है कि कोई बस हॉस्पिटल में एडमिट कर दो या फिर कोई मालिश कर दो अच्छे से पैरों की, और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ वाला पेन हो रहा है, और फीवर 100 से 102 से 103 तक पहुँच जा रहा है, और ये इसके साथ साथ कुछ लोगों को कोल्ड भी है तो कुछ को खांसी भी है। अब समझ नहीं आ रहा, देखो स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी चाहिए।

है ना, डॉक्टर के पास जाओ आप लोग। मैं तो पहले ये बोलूंगा डॉक्टर के पास जाओ। दूसरी चीज पॉसिबिलिटीज सोच लेते हैं, डेंगू भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, और हो सकता है एक नॉर्मल सा वायरल सा फीवर हो। और मैं तो यही प्रे करूंगा कि अगर कोई भी इंसान बीमार है इस टाइम, उसको एक नॉर्मल सा वायरल फीवर ही हो, ताकि वो जल्दी से इन सब चीज़ों से रिकवर कर सके। अब करते हैं बात इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। पहली तो बात, फुल स्लीव के कपड़े पहनना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं पहनता फुल स्लीव के कपड़े। खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी ख्याल अपनी तबीयत का ख्याल रखना हमें पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मौसम बदल रहा है मेरे दोस्त, सुबह और शाम को थोड़ा बहुत ठंडक होनी शुरू हो गई है, तो ठंडा पानी पीना अब हो सके तो अवॉइड कर दीजिए। और इसके साथ साथ मच्छरों से बचाव के लिए घर में जो मस्कीटो रिपेलेंट होते हैं ना, उन सब का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसी बीमारी दिक्कत दे जाएगी थोड़ी सी। तो चिकनगुनिया डेंगू ये सब फैल रहा है बहुत तेज़ी से। इसके अलावा टाइफाइड भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है, ये अभी रिसेंट में मेरे नॉन में किसी को हुआ था, फिर मैंने दूसरे से पूछा उसको भी हुआ था, फिर वो जहाँ पर एडमिट था उसमें 3-4 लोगों को हुआ हुआ था। तो टाइफाइड भी फैल रहा है, तो प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ये मौसम है, कुछ भी हो सकता है इस मौसम में, मगर हम लोग तो गाना गाएंगे, मतलब गाना चलाएंगे आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी ऐसा देखा है कि आपने सपने में बर्थडे पार्टी मनाई है किसी का? तो इसका क्या मतलब हो सकता है? वक्त हो चुका है सपनों को डिकोड करने का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। अगर आप सपने में किसी को भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हो तो इसका सिंपल सा एक पॉजिटिव मतलब है, और उसका मतलब ये है कि कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ये सपना इशारा करता है कि आपकी लाइफ में कोई नया फेज शुरू हो सकता है, जैसे कोई नई जॉब, नया रिश्ता या फिर कोई नया बिजनेस। और इसका सिंपल सा मतलब ये भी है कि खुशियाँ बढ़ने वाली है, सक्सेस आने वाली है और कोई अच्छी खबर आपका इंतज़ार कर रही है। और हो सकता है आपकी कोई पुरानी विश हो वो पूरी होने वाली हो, क्योंकि सपने में अगर आप केक काटते हैं या फिर कैंडल्स बुझाते हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि आपकी कोई पुरानी विश पूरी होने वाली है। और दोस्तों और फैमिली के साथ अगर आप सपने में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप आने वाले समय में लोगों के साथ इन रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत कर लोगे। अब देखो, जितने भी मैं सपनों को डिकोड करता हूँ ना, तो इसके मतलब यही होता है कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा एक मतलब होता है। खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब एक बहुत ही अच्छा किस्मत चमकाने वाला साइन आपको मिल रहा है। हो सकता है लॉन्ग लाइफ, हो सकता है रिस्पेक्ट और आपको सम्मान, वो दोनों मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, परिवार में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर दोस्ती में ही क्यों ना हो। और हो सकता है आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ भी होने वाली है, मतलब मेंटल और इमोशनल लेवल पर आप ग्रो करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सपने बताते हैं, तो ऐसे ही रोज़ शाम को सपनों को डिकोड करते हैं और आज भी डिकोड किया ये सपना। और अभी फ़िलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, मैं हूँ गौरव आपके साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM एंड शो चल रहा है HR 89।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं तो आप लोगों को टाइम का एक हिसाब रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जिम में टाइम का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये बताने के लिए मैं आ गया हूँ। रेडियो का गौरव AKA जिम ब्रो है आप सभी के साथ, और रोज शाम को इस टाइम हम लोग जिम टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बात करें कि टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी वाइल यू आर डूइंग वर्कआउट। चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप रनिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, या फिर आप योगा करते हैं, XYZ कुछ भी, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कुछ लोग ना जिम चले जाते हैं, वहाँ 1.5-2 घंटा बिता कर आते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रात को लेट तक फ़ोन में लगे रहते हैं, सो ढंग से पाते नहीं है, रेस्ट मिलता नहीं है बॉडी को, और फिर नेक्स्ट डे फिर से जिम चले जाते हैं, फिर उनका यही रूटीन कंटिन्यू रहता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम कैलकुलेट करके चलना है कि आपको कितना टाइम जिम में देना है, कितना टाइम आपको नींद लेनी है, कितना टाइम आपकी बॉडी एट रेस्ट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वर्कआउट जब आप कर रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा कि एक सेट किया और फिर 5 मिनट बातें करने में लग गए, क्योंकि मैं तो अपने जिम में देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को जो बस इधर से उधर बातें करते रहते हैं और डंबल इंतज़ार पर रखवा देते हैं, मतलब वेट अपने पास रख लेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ, और जैसे ही आप लोग डंबल उठाने जाएंगे फिर से आ जाएंगे नहीं नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद वो बात करने में फिर से लग जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक देम, अपना वर्कआउट कीजिए और टाइम मैनेज कीजिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि रोज शाम को इस टाइम जिम टिप लेकर आता हूँ जिम ब्रो बनकर। और अभी आप सभी के लिए चला रहा हूँ गाना, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए। सुन

बहुत सारी मींस बहुत सारी बातें करी है मैंने आज, और पता ही नहीं चला इस हफ्ते का तो, क्योंकि वेंसडे भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। 11 मेडल्स जीत चुकी है टीम इंडिया एशियन गेम्स में, और अभी बहुत सारे मेडल्स और भी आने बाकी है, और मुझे लगता है एक गोल्ड और कन्फर्म्ड है फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम। बट ये 22 तारीख वाला मैच, मींस कल जो सुबह मैच हुआ था ना जापान में वो उसके मैंने हाइलाइट्स देखे, क्योंकि लाइव तो मैं देख नहीं पाया था। हाइलाइट्स मैंने देखे तो फिर मुझे लगा ये सच में टीम इंडिया ही है क्या, वर्ल्ड चैंपियंस टीम इंडिया T20 में जो वर्ल्ड चैंपियन है। बट कोई नहीं, कभी कभार देर आर बैड डेज, देर आर गुड डेज। कल बैड डे रहा होगा, जीत गई टीम इंडिया एट द एंड, यही मैटर करता है। और इसके अलावा मैं बात करी मैंने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में। NCR में रहते हो तो खर्चा फरीदाबाद में ही सबसे कम है, बाकी सब जगह बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़, बीमारी फैल रही है, चिकनगुनिया डेंगू ये सब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा एक और वायरस फैल रहा है, वो वायरल कह सकते हो आप लोगों से, जिसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है, किसी को कोल्ड भी है तो किसी को खांसी भी है। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, और स्मॉगी डेज है, स्मॉगी मॉर्निंग है, इसमें बच के रहिए, और अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रहें, हाइड्रेटेड कभी कभार बोला नहीं जाता, हाइड्रेटेड, हाँ मतलब पानी पीते रहे टाइम टाइम पर। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से कल शाम 5 से 9, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई ना कोई तो मेरा वेट कर रहा होगा ना बाहर, कुछ खाएंगे पिएंगे, पिएंगे तो नहीं खाएंगे कुछ, और घर जाएंगे। और अभी फिलहाल लेता हूँ इजाज़त, वापस आएगी गीत उदिष्क बाजी, हाँ प्यार भरी बातें लेकर, तो मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा आपको, चला रहा हूँ आप लोगों के लिए ये गाना। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं बता दिया तो?
2: नहीं, क्यों?

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एमडी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स एंड यस, आई आल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माय एडवाइस टुडे कम्स फॉर विमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, देर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग वेन यू आर सिटिंग विद राइट पीपल। पाँचवीं चीज़, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपका बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।
0: डॉक्टर कॉलिंग। रेडियो महारानी 89.6।

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी।

89.6 FM कुछ हटके और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ, आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां, और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था। लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज। और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी, उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है, और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है, यानी बिल्कुल हमारी तरह। आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं। एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल, मैसेज पढ़ लिया जाता है जवाब नहीं आता है, किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती। और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना, हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर, और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट, और दिल बहुत कामली कहता है रियली। फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है। और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स आ गई हैं, लेकिन इंतजार अभी भी वही है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, सेगमेंट है इश्क शायराना, और अब है दिल को थोड़ा और फराज में बनाने का वक्त। एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन। एक कम्प्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सब के सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहां आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंचकर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था। और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं, उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदी हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नई कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
1: मम्मी के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवां।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani. मैं आपके साथ हूँ इश्क़वाली गीत. आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की. एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं. फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं. उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुडबाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा. फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस. आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है. किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है. कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो. यही फराज का मैजिक है. वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है. कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं. तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई, तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है. मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां. तो आज की रात हमने की फराज साहब के नाम. अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त.

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल रखो।

0: Pamorea.
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

0: बाजियां।
1: एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी डी 9.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लव्स कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

प्यार बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा। चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ।

तेरे जैसे।

नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।

लगा

रेडियो महारानी।

89.6 रेडियो महारानी।

गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना, ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना। और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

बने।

0: ही पकड़ने के लिए ठाकुर को जय और वीरू की मदद चाहिए, जिसके लिए उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि उन्हें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जय और वीरू मान जाते हैं और होली वाले दिन डाकुओं के आने पर उन पर हमला कर देते हैं।
1: गब्बर को पता चला कि गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है।
0: पर इस लड़ाई के दौरान जय देखता है कि ठाकुर ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे गाँव वालों की जान जा सकती थी। जिसके बाद सबको एक सच्चाई का पता चलता है कि जब पुलिस ऑफिसर ठाकुर ने गब्बर को पकड़ने की कोशिश की थी तब गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे और उसके पूरे परिवार को भी जान से मार दिया था।
2: ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर।
0: इसलिए ठाकुर रिटायर होने के बाद भी गब्बर को पकड़ना चाहता था, पर दोनों हाथ ना होने की वजह से वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता था। ठाकुर की कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं। लड़ाई में वीरू अपने

रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म शोले के 48 साल।

love.

दोनों बहनों की बहनों

हैं।

0: मान जाते हैं और होली वाले दिन डाकुओं के आने पर उन पर हमला कर देते हैं।
1: गब्बर को पता चला कि गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है।
0: पर इस लड़ाई के दौरान जय देखता है कि ठाकुर ने उनकी कोई मदद नहीं की जिससे गांव वालों की जान जा सकती थी। जिसके बाद सबको एक सच्चाई का पता चलता है कि जब पुलिस ऑफिसर ठाकुर ने गब्बर को पकड़ने की कोशिश की थी तब गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे और उसके पूरे परिवार को भी जान से मार दिया था।
2: ये हाथ हमको दे दो ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर।
0: इसलिए ठाकुर रिटायर होने के बाद भी गब्बर को पकड़ना चाहता था पर दोनों हाथ ना होने की वजह से वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता था। ठाकुर की कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़ कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं। लड़ाई में वीरू अपने

ही नशा।

में तो

ऐसा नहीं होता तो ऐसे

बार क्यों?

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना,

इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा न छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। 24 मिनट अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलू कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के संभजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते, ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का यह अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है, किसी की तो मान ले अपने जीवन। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, 24 मिनट उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है, वो धाम वासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धाम वासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है, यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरि पार्षद वैष्णव जनों के दर्शन, यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है।